सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2026। श्रोताओं उपस्थित हैं हम अपनी आज की सभा के कार्यक्रमों के साथ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।

0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। लीजिए सुनिए आज का चिंतन, विषय है अपना दुख, स्वर मन्मथनाथ मिश्र का है।

जोसिबा नाम की एक संत थी। सदा प्रभु की प्रार्थना किया करती थी। परमात्मा में उनका अखंड विश्वास था। उनकी सांस सांस में वही बिराजती थी। लाख विघ्न आए, बाधाएं आए, विपरीत परिस्थितियां आए, उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता था। मनुष्य है तो नाना प्रकार के कष्ट भी हैं। देहधारी को दंड भोगना ही पड़ता है। कोई हंसकर भोगता है, कोई रोकर भोगता है। कबीर कहते हैं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी जानता है कि मनुष्य शरीर धारण करने वाले को यह भोगना ही पड़ता है, नहीं है कोई उपाय इससे बचने का। परंतु भोखे जन हाय तौबा मचा देते हैं, परमात्मा को कोसने लगते हैं, क्या दुख दे दिया भगवान आपने, सहा नहीं जाता है। भक्त को रहता है भरोसा भगवान पर कि वही सब कुछ पार लगाएंगे, वही है खेवनहार, भवसागर से पार वही उतारेंगे, वहां दुख से छुटकारा पाना कौन सी बड़ी बात है। एक दिन जोसिबा सोचने लगे, हे प्रभु, इतना भजता हूं आपको, क्षण भर के लिए भी मेरा ध्यान दूसरी ओर नहीं भटकता है, फिर भी आपकी मुझ पर कृपा कहां होती है, दुख से छुटकारा कहां मिलता है, मैं तो अपने दुख की पोटली सिर पर लादे चलता रहता हूं, मेरी पोटली न दे सके, दुख से निवृत्ति न दिला पाए, इतना तो कर दें कि मेरा दुख दूसरे के दुख से बदल दें, कुछ तो राहत मिलेगी। अपना दुख भोगते भोगते ऊब गया हूं प्रभु। रात को सोने के पहले जोसिबा यही सोचते रहे, फिर प्रार्थना की और निद्रा मग्न हो गए। प्रातःकाल सूर्य पूर्वी क्षितिज पर प्रकट होने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और सोचा कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रभु के प्रति एक प्रणाम भर रह जाए, तभी उसके जन्म लेने की सार्थकता है। इसी समय बाहर डुगडुगी पीटने की आवाज आने लगी। संत चौंके, कितनी प्रातःकाल डुगडुगी पीटने का क्या सबब हो सकता है। डुगडुगी पीटने वाला जोर जोर से घोषणा कर रहा था, भाइयों बहनों सभी उम्र के लोगों सुनो सुनो, शाही फरमान ध्यान से सुनो, आज अपराह्न 4 बजे सार्वजनिक सभागार में सब लोग जुटे, जिन्हें अपने दुख की पोटली भारी लग रही है वे अपनी पोटली दूसरे की पोटली से बदल सकते हैं, ध्यान रहे ठीक 4 बजे सार्वजनिक सभागार में आ जाएं। संत यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुए कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली, इसीलिए तो अपना अपना दुख विनिमय करने की घोषणा हो गई। उन्होंने प्रभु के प्रति आभार प्रकट किया। 2 बजे दिन से ही लोग सभागार की ओर दौड़ने लगे, सबकी पीठ पर एक एक पोटली थी। सभागार में घुसते ही लोग दौड़कर किसी खूंटी में अपनी पोटली टांग देते थे और अन्य पोटलियों का भी मुआयना कर लेते थे कि किस पोटली से बदलना उपयुक्त होगा। सभागार में पर्याप्त जगह थी, दीवार में काफी खूंटियां थी। समय होते होते सभागार खचाखच भर गया, खूंटियां पोटलियों से भर गई। सबकी नजरें दूसरे की पोटलियों पर लगी थी कि बदलने में चूक न हो जाए, कि अपने से अधिक भारी पोटली हाथ में लग जाए। ठीक 4 बजे मंच से घोषणा हुई, सभी अपनी इच्छा अनुसार पोटली बदल सकते हैं। सभी अपनी अपनी पोटली की ओर भागे कि वह कोई दूसरा न ले ले। पता नहीं दूसरे की पोटली में क्या है, अपनी पोटली ढोने का वर्षों से अभ्यास है, दूसरे की पोटली उठा न पाए तो। देखते देखते ही सभागार खाली हो गया, खूंटियां खाली हो गई, लोग अपनी अपनी पोटली पेट पर लादे

प्रसन्नचित लौट रहे थे, मानो दिग्विजय कर लौटे हैं। संत पछता रहे थे कि उसे क्या सूझी कि ऐसी प्रार्थना कर दी। दूसरी ओर उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी, सत्य से साक्षात्कार करा दिया। अपना दुख ही सही है, उसी को सहने का अभ्यास हो, निश्चिंत होकर मनुष्य प्रभु का स्मरण करे, सुख दुख के झमेले में न पड़े।

ये था आज का चिंतन। विषय था अपना दुख, स्वर मन्मथनाथ मिश्र का था। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति गीत। आइए सुनते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये भक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में रंग दे चुनरिया।

0: लता मंगेशकर के गाए इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 2-1।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है।

सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान की आज की कड़ी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग 7:20 पर होगा। परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार 7:30 पर आप सुनेंगे। बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 8:45 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9:00 से आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11:00 से विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

संध्या 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। 5:30 पर होगा कार्यक्रम युवा तरंग। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जैसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 6:02 पर होगा कार्यक्रम मेहनत कश। 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 7:00 प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। 7:30 से आप सुनेंगे ICC विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। 8:45 पर होगा समाचार संध्या। 9:00 News@9, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। और 9:30 से आप सुनेंगे ICC विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल।

ये थी आज की सभा में प्रसारित की जाने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत सानन्दं प्रतिवर्षं विंशति कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन पञ्चशत कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000 वर्षान्तं यावत् भारते पञ्च सेमिकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार बहरीन कुवैत ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे लोक भजन। गायिका है नीमा देवी, धनराज देवी, बिमला देवी और मीना देवी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं नीमा देवी, धनराज देवी, विमला देवी और मीना देवी से लोक भजन।

0: नीमा देवी, धनराज देवी, बिमला देवी और मीना देवी के गाए इसी लोक भजन के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं परिवार कल्याण पर आधारित कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार यादव से ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगे रेबीज बीमारी से बचाव के उपाय के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार।
1: मित्रों, कुत्ते पालना आमतौर पर शौक माना जाता है लोगों का, और काफी लोग जो हैं इस शौक के कारण कुत्ते को पालते हैं, और यह शौक ही नहीं, कुत्ते को बेहतर प्रहरी के रूप में जाना जाता है, और स्वामी भक्त की जब बात आती है तो उससे भी बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आमतौर पर कुत्ते को जब लोग पालते हैं तो उसके कई नस्ल होते हैं, तो कौन सी नस्ल के कुत्ते हम पालें और उनका रख रखाव कैसे हो, और जब कुत्ता पालते हैं तो एक आम बीमारी रेबीज की बात आती है तो वो कैसे होता है, सिर्फ काटने से ही होता है या उनके संपर्क में जाने से भी होता है, इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हम आज उपस्थित हैं घोड़ा अस्पताल के पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी के पास। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कुत्ता का जो नस्ल होता है, तो कौन से नस्ल को व्यक्ति अपने पास रखे जो कि उसके लिए मतलब कि उसके संपर्क में आने से बीमारी भी हो जाए तो उसे मतलब बचाव हो सके।
2: नस्ल से बीमारी का उस तरह से संबंध नहीं है।

0: नस्ल का चुनाव चूंकि व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत पसंद पर है, तो कुछ चूंकि एक प्रहरी के रूप में है
1: जी
0: और कंपेनियन डॉग मैंने कंपेनियन के रूप में साथी के रूप में भी है,
1: जी
0: कुछ ऐसा है कि छोटे नस्ल के जैसे कुत्ते हैं तो साथी के रूप में बेहतर है, जैसे पग वगैरह नस्ल का, लेकिन वो प्रहरी के रूप में उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, या कुछ जैसे इंटेलिजेंट कुत्ते मतलब हैं
1: जी
0: जैसे
1: जी जी जी
0: डोबरमैन
1: जी
0: डोबरमैन वगैरह है, तो वो सब पुलिस या प्रशासनिक विभाग में उसकी सेवा ले जाती है,
1: जी
0: खास करके इन्वेस्टिगेशन वगैरह के मामले में। तो वो अपना व्यक्तिगत पसंद और किस तरह की जरूरत है उसके हिसाब से, तो कुछ अलग अलग जैसे कि अगर जर्मन शेफर्ड है, डालमेशियन है,
1: जी
0: चाहे फॉक्स टेरियर है, पग है, पमेरियन है, तो कुछ छोटे नस्ल के हैं, कुछ बड़े नस्ल के हैं। पग वगैरह जैसे है छोटे नस्ल का है और देखने में प्यारा है, एक साथी के रूप में है,
1: जी जी
0: और तो जर्मन शेफर्ड है या इस तरह का भी जो भी है अल्सेशियन में, तो
1: तो ये सारे
0: वो
1: नस्ल
0: डॉग है। ये
1: के
0: नस्ल मतलब बहुत ज्यादा नस्ल है कुत्ते का, और सबका चूंकि अपना व्यक्तिगत पसंद, कुछ बड़े जिसका बॉडी वेट काफी ज्यादा है, कुछ का बॉडी वेट काफी कम है, तो जिस तरह का अगर साथी के रूप में रखते हैं तो आप पसंद से वो ले सकते हैं कि किस तरह का लेना है, लेकिन बीमारियों तक जहां तक संबंध है, वो जैसे रेबीज है, चाहे कैनाइन डिस्टेंपर है, हिपेटाइटिस है, चाहे जो भी बीमारियां हैं, तो सब नस्ल के कुत्ते को होगा, वैसा नस्ल पर बीमारी का कोई विशेष रूप से नहीं है।
1: मतलब किसी भी नस्ल के हैं वो बीमारी होनी ही है, अगर वो
0: हाँ,
1: काट लिया है या
0: तो
1: कुत्ते को होना है तो वो होगी ही होगी।
0: मुख्य जो बीमारी सब है तो उसमें वो किसी भी नस्ल के कुत्ते को हो सकती है, तो उसमें एक मुख्य बीमारी रेबीज है,
1: जी
0: क्योंकि रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और उसका है कि बहुत से तरह के जानवरों में, आदमी से लेकर के पालतू पशुओं में, कुत्तों में, बहुत ज़्यादा जाति के पशुओं को ये आक्रांत कर लेता है, और ये बहुत ही भयानक और घातक इस मामले में है कि टीकाकरण ही इसका उपाय है, और बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाने पर इसका कोई उपाय, कोई दवा नहीं है, तो इसका बेहतर है कि पहले से वैक्सीनेशन कराया जाए, टीकाकरण, और उसके साथ कैसे ये फैलता है,
1: जी
0: तो फैलने का मुख्य रूप से इसका काटने से होता है,
1: जी मुख्य रूप से इसके काटने से ही ये बीमारी होती है।
0: और काटने में जो है, जैसे अगर स्किन में, चमड़े में अगर वो पकड़ लेता है, चाटने से उसका नहीं है, लेकिन चाटने से चूंकि वायरस इसका लार में रहता है,
1: जी।
0: हालांकि ऐसा नहीं है कि हर समय रहता है, लेकिन अगर किस समय है किस समय नहीं है, लेकिन खास करके अगर पागल कुत्ता है तो वो तो निश्चित रूप से
1: बीमारी होगी उसमें।
0: उसमें बीमारी, उसमें वायरस है, लेकिन कभी कभी जैसे रोड पर जो कुत्ते चलते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसमें बीमारी नहीं है लेकिन वायरस उसमें है, तो
1: अच्छा
0: उसको कतई मतलब निरापद नहीं समझा जा सकता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वैसा कुत्ता भी अगर काट लेता है तो उससे रेबीज बीमारी की आशंका पूरा है,
1: तो
0: तो
1: उसका टीकाकरण करवाना होगा, टीका लेना होगा,
0: टीका उसका लेना होगा,
1: इंजेक्शन उसका लेना होगा। जी
0: लेना
1: जी
0: होगा।
1: अच्छा, ये इस बीमारी से बचाव के लिए जो आपने कुत्ते का जो आपने बताया, तो वो कितने अंतराल में, कितने समय अंतराल में, कितने वर्षों के लिए के दरमियान ये कुत्ते को लगानी चाहिए
0: उसमें
1: वैक्सीनेशन?
0: पहले तो हम काटने के बारे में, अच्छा इसके बारे में हम बता देते हैं, इसमें आपको जो है कुत्ता को 2 से 2.5 महीने पर या 3 महीने के अंदर में एक बार, 2 3 महीने से पहले एक बार ले सकते हैं जहाँ तक ज़्यादा आशंका है तो, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर एक बार रेबीज का टीका लेना है, और उसके बाद वो हर साल उसका 1 साल वर्ष के अंतराल पर उसका रेबीज का टीका दिलाते जाना है,
1: और वैक्सीनेशन वाले कुत्ते अगर काट ले किसी को तो उसे फिर बीमारी का खतरा नहीं रहता।
0: वैक्सीनेशन का कुत्ता मतलब जो जिसको वैक्सीन पड़ा हुआ है वो तो निरापद हो गया, और प्लस उसकी भी सुरक्षा होती है, क्योंकि उसको भी कोई अगर कुत्ता काट लेता है तो ज्यादातर जैसे कुत्ता के काटने से होता है, या पागल अगर जैसे रेबीड हो गया, जो जिसके रेबीज की बीमारी आ गई, अगर वैसे कुत्ता है या बकरी, अरे गाय है, बकरी है, या और कोई भैंस है, पालतू पशु भी है, उसको अगर रेबीज की बीमारी पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है, उसका लक्षण आ रहा है,
1: जी
0: तो उसके मुंह में हाथ डालने से, या कुछ दवा अगर पिलाते समय हाथ में काट लिया, या इस तरह का है।

0: उसके काटने से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है देहातों में जैसे सियार हो गया ना, और इसी नस्ल के जो भी प्राणी जो इससे मिलते जुलते हैं, चमगादड़ हुआ, उस सब के काटने से भी फैलता है।
1: इन सब मतलब बीमारी की खतरा रहता है।
0: एक और चीज इसको बताना चाहेंगे कि अगर रेबीज से वैसा आशंका वाला कोई भी कुत्ता या दूसरा पशु काट लिया है तो सबसे पहले साबुन से उसको धोना चाहिए
1: जी, उस स्थान पर जी।
0: वो साबुन उसको बहुत वायरस को नष्ट करने में वो सहायक है, तो साबुन लगा करके उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। उसके बाद चूंकि घाव हो गया है तो उसे बाद में एंटीसेप्टिक कोई मलहम या क्रीम उसमें लगा सकते हैं,
1: डिटॉल वगैरह सभी धोने से फायदा है,
0: धो सकते हैं, लेकिन पहले उसको साबुन से धोया जाए जितना जल्दी हो सके।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि उपलब्ध इसकी दवाइयां नहीं होती है हॉस्पिटल में, तो ऐसे में टेटनस से क्या लगा देना चाहिए रोगी को?
0: टेटनस तो चूंकि टेटनस से बचाव करता है, और रेबीज बीमारी का वैक्सीन अलग है
1: जी,
0: और टेटनस तो टेटनस
1: नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरंभिक शुरुआती के लिए
0: है, तो उसको अगर काट लिया है कुत्ता उस तरह का या कोई भी पशु जो रेबीज से आक्रांत है, तो उसको अगर मिट्टी जैसे उसमें लग गया है वो टेटनस का बैक्टीरिया जाने का खतरा है, तो उसको टेटनस का तो टीका ले लेंगे, लेकिन टेटनस से वो रेबीज का कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग बीमारी है
1: जी, जी, जी।
0: और रेबीज के लिए उसका टीका है कि उसी दिन से, अगर इसका रिकमेंडेशन है कि उसी दिन से रेबीज
1: का, जीरो दिन से पड़ता है,
0: हाँ जीरो दिन से पड़ा, अगर लेट हो जाता है
1: लेकिन किसी का दो चार
0: दिन अगर लेट हो गया दो दिन तो भी उसको छोड़ना नहीं है चूंकि करा लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर काट लिया तो उसी दिन से जहां तक संभव है जितना जल्दी करें, और उसका कोर्स है पूरा कोर्स का मतलब ले लेना चाहिए।
1: अभी कितने इंजेक्शन का डोज है डॉक्टर साहब?
0: अभी तो पालतू पशुओं में है वही
1: पांच
0: का छह है, लेकिन एक महीना के अंदर पांच डोज पड़ जाता है और उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, और तीन महीना 90 दिन पर छठवां डोज है जो कि ऑप्शनल है, तो उसको नहीं लेने ज्यादा डर है तो उसको भी ले सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, बहुत कोई को कुत्ते के संपर्क में रहने जैसे साथ में लेकर के सोना और मतलब बिल्कुल साथ साथ रहना, तो ये घातक है या फिर चल सकता है?
0: कुछ ऐसे स्किन वाले जो बीमारियां हैं और दूसरी बीमारियां हो सकती है, लेकिन साथ रहने से रेबीज बीमारी नहीं होगी
1: जी।
0: अगर कुत्ता काट लेता है या पकड़ लिया, लेकिन स्किन में पेनिट्रेशन होना चाहिए, स्किन में छेद होना
1: जी
0: चाहिए
1: जी।
0: और स्किन में अगर नहीं है, लेकिन अगर स्किन कहीं घाव है या कहीं छिल गया है, तब उससे भी उसका जो बैरियर है वो खत्म हो जाता है, तो उसके लार से जा सकता है, अगर लार के संपर्क में आया है तो वायरस जा सकता है, इसलिए उसको मतलब उसको ध्यान में रखना होगा। और अगर जैसे गाय को अगर काट लिया है, उसका टीकाकरण चल रहा है, तो ऐसा गाय का दूध बिना आधा घंटा बॉयल किए हुए खौलाए हुए, खौला करने के बाद ठंडा करके तब उसको सेवन कर सकते हैं।
1: नहीं तो अगर किसी गाय को कुत्ते ने काटा हो, काट खाया हो और उसमें भी रेबीज का असर हो गया, उसका दूध पी रहे हैं, तो फिर उसे भी रेबीज होने का खतरा रहता है।
0: क्योंकि ओरल रूट से खाने वाले रूट से थोड़ा संभावना कम है, लेकिन उसको निरापद नहीं है, तो उसको दूध को आधा घंटा अगर हम खुला करके फिर उसको ठंडा करके सेवन करते हैं, तब उसमें खतरा खत्म हो जाता है।
1: तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना डॉक्टर अजय कुमार यादव जी से कि रेबीज बीमारी कुत्ते के माध्यम से किस प्रकार से फैलती है और ये कितना घातक है हमारे लिए और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने एक अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार यादव से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे रेबीज बीमारी से बचाव के उपाय के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। इसी के साथ परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे मणिपाल स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन है अनामिका एवं नहमता प्रवीण का। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: नमस्कार
1: प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों और हमारे सभी प्रिय श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बच्चों का सबसे प्यारा कार्यक्रम फुलवारी।
0: मैं हूँ नहमता। कितनी खुशी की बात है कि लंबे अंतराल के बाद आपकी अपनी फुलवारी फिर से सज गई है। वही मस्ती, वही हंसी, वही सीख और ढेर सारी नई बातें लेकर हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर हैं।
1: और मैं हूँ अनामिका। जैसे बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वैसे ही हमारी फुलवारी में खिलेंगे नन्हे सपने, प्यारी मुस्कानें, मजेदार कहानियाँ, ज्ञान से भरी बातें, पहेलियाँ, गीत और बच्चों की शानदार प्रतिभाएं।
0: तो प्यारे बच्चों, अपनी कल्पनाओं को दीजिए उड़ान, मुस्कान को रखिए बरकरार और हमारे साथ बिताइए अगले कुछ खूबसूरत पल, क्योंकि अब हर मुलाकात होगी नई सीख, नए उत्साह और नई खुशियों के साथ।
1: तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकालिए, अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ बैठ जाइए और अगले कुछ पलों तक हमारी इस खूबसूरत फुलवारी का हिस्सा बन जाइए।
2: जय हिंद बच्चों।
1: तो आइए मिलवाते हैं आप सभी को आज के फुलवारी के मेहमान दोस्तों से। वो है मणिपाल स्कूल के बच्चे। कैसे हैं बच्चों आप सब?
0: और प्रोग्राम देने के लिए रेडी है ना?
1: तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के पास और देखते हैं ये क्या सुनाएंगे। आप अपना नाम बताइए पहले।
3: सहमत।
1: किस क्लास में आप पढ़ते हैं?
3: LKG में।
1: और क्या सुनाएंगे आज?
3: चंदा मामा आना, दूध पटाखा खाना, मीठी लोरी गाना, बिस्तर में सो जाना। थैंक यू एवरीवन।
0: और साथ में एक और बच्ची है, आपका नाम क्या है?
4: अनायका देव।
0: और किस क्लास में आप पढ़ते हो?
4: LKG।
0: क्या सुनाने वाले हैं वो, ये जल्दी से बताइए।
4: वन लिटिल फ्लावर, वन लिटिल बी, वन लिटिल ब्लू बर्ड हाई इन द ट्री, वन लिटिल ब्राउन बेयर स्माइलिंग एट मी। थैंक यू एवरीवन।
1: और आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए।
5: मानविक सोनी।
1: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
5: UKG।
1: और क्या सुना रहे हैं आज?
5: सूरज निकला मीठा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेर, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न को। थैंक यू।
0: अनामिका जी, एक और बच्ची इंतजार में खड़ी है, नाम सुनते हैं।
6: आकांक्षा कुमारी।
1: और आकांक्षा किस क्लास में पढ़ती है?
6: UKG।
1: और क्या सुना रही है आज?
6: देवी ना जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी अ लायन लुकिंग एट मी, ओ डियर मिस्टर लायन, व्हाट डू यू सी, आई सी अ लायन लुकिंग एट मी। थैंक यू।
0: आपका नाम क्या है?
7: सुदांश।
0: और किस क्लास में पढ़ते हो?
7: नर्सरी।
0: तो चलिए अपना पोएम सुनाइए।
7: देखो कितना आम रसीला, सिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है आम फलों का राजा। थैंक यू।
1: आम फलों का राजा है। और आप बताइए आप क्या सुनाएंगे?
8: हाथी राजा।
1: आम फलों का राजा के बाद हाथी राजा।
0: हाथी राजा।
1: नाम बताइए अपना।
8: आरब सोनी।
1: फिर से बताइए।
8: आरब सोनी।
1: और किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या सुना रहे हैं, सुनाइए।
8: हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, चूल उठा कल कहाँ चले, मेरे घर पर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर।
1: कुर्सी बोली चटर पटर। नहमता, अब छोटे बच्चों के बाद हम बढ़ते हैं थोड़े बड़े बच्चों के पास और इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति के बाद नहमता आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल। और यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं ग्रुप सॉन्ग लेकर, तो आप सभी क्या सुनाने वाले हैं? तो चलिए सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना नाम और क्लास बताइए।
9: राजा कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
10: स्नेहा शर्मा फ्रॉम क्लास 6।
11: कश्यप कैसर फ्रॉम क्लास 6।
12: वैष्णी कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
13: प्रियांशी मेहता फ्रॉम क्लास 6।
14: समृद्धि कुमारी फ्रॉम क्लास 6।
15: अनुष्का रानी फ्रॉम क्लास 6।
16: दीपिका कुशवाहा फ्रॉम क्लास 6।
14: जया कुमार फ्रॉम क्लास सिक्स.
11: लवली कुमारी फ्रॉम क्लास सिक्स.
15: सबा परवीन फ्रॉम क्लास सिक्स.
16: सृष्टि कुमारी फ्रॉम क्लास सिक्स.
17: अलीजा फिरदौस फ्रॉम क्लास सिक्स.

0: और नहमता, इस देशभक्ति गीत के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता, जागरूकता और सुंदरता की मिसाल की कहानी लेकर तैयार है एक बच्ची, इससे पूछते हैं ये नाम इनका। आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही है।
1: मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं हमारे देश की एक ऐसे गाँव के बारे में बताऊंगी जो स्वच्छता, जागरूकता एवं सुंदरता की मिसाल है। तो आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मामलिनांग गांव, जो मेघालय में स्थित है, इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यहां प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता और यहां की आबादी 100% साक्षर है। यह गांव महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। यहां पर बच्चों को माँ का उपनाम मिलता है और पैतृक संपत्ति माँ द्वारा घर की सबसे छोटी बेटी को दी जाती है। यह गाँव इतना सुंदर है कि इसे भगवान का बागीचा भी कहा जाता है। मावलिनांग गांव मेघालय की राजधानी शिलांग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। मावलिनांग को 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि से सम्मानित किया गया। कई लोग इसे दुनिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहते हैं। यहां की जनसंख्या लगभग 500 है, जिसमें लगभग 95 खासी जनजातियां परिवार रहते हैं। स्वच्छता के लिए मशहूर मावलिनांग गांव में पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक है। इतना ही नहीं, यहां हर कोने में बांस के बने कचरादान भी होते हैं। आवारा जानवर तो क्या, यहां पेड़ों से गिरे पत्ते तक सड़कों पर नजर नहीं आते। इस गांव के रास्तों के दोनों ओर पर फूल पौधों की क्यारियां हैं और वहां स्वच्छता का निर्देश देने वाले बोर्ड भी लगे हैं। गांव के हर परिवार का एक न एक सदस्य यहां की सफाई में भाग लेता है। यदि कोई ग्रामीण स्वच्छता अभियान में भाग नहीं लेता है तो उसे घर पे खाना नहीं दिया जाता। सुनने में आता है कि 1988 के आसपास यहाँ हर मौसम में महामारी फैली थी, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए रिशोद खोक थोरम नाम के एक शिक्षक ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। पहले तो उन्हें इस मुहिम को लेकर काफी संकोच हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए इसे पूरी तरह से अपना लिया। स्वच्छता के लिए एक समिति का गठन हुआ और इस तरह यह गांव के लिए एक अभियान बन गया। मावलिनांग गांव के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक द स्काई व्यू है, जो काफी खूबसूरत स्थान है। इस दृश्य को देखने के लिए एक टावर बना है जो 75 फीट ऊंचा है और पूरी तरह से बांस का बना है। गांव भारत बांग्लादेश देख सकते हैं। इस स्थान का प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति है, जो बदले में आपको एक अमूल्य अनुभव प्रदान करता है। तो आइए आज हम और आप मिलकर एक संकल्प ले कि हम भी अपने भारत को मावलिनांग की तरह स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, इस बच्ची ने तो सबको सिखा देने वाला
2: जो एक स्टोरी था वो हम लोगों को बताया, और ये एक रियल स्टोरी था और जिस गांव के बारे में बताई, बहुत ही स्वच्छ और सुंदर गांव है। तो कल्पना में ही लगता है कि कितना स्वच्छ और सुंदर।
0: तो करना चाहिए हम लोगों को भी अपने जगह को ऐसा, और ये हम खुद कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथों का चीज है।
2: अच्छा, यहाँ पे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आइसक्रीम या लेस, कुरकुरे कुछ भी अगर खाते हैं तो वो रैपर को कहाँ फेंकते हैं? जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी आदत है।
0: जब हम खा रहे हैं तब तो फेंके, कहीं आते जाते भी अगर हमारे साथ उस तरह का कुछ कचरा हो तो वो हम इकट्ठा करें और उसे डस्टबिन में ही डालें। ऐसा हम सबको करना चाहिए कि नहीं? तो अब आगे बढ़ते हैं और गाना भी हम लोगों ने सुना, ये एक बहुत बड़ी सीख लोगों को मिली। अब पोयम सुनते हैं, कुछ बच्चे कविताएं लेकर तैयार हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आप आगे आइए।
3: तो नहमता, पर्यावरण को स्वच्छ तो रखना है तो, और पर्यावरण के लिए हमें पेड़ भी बचाना है, तो इसी से संबंधित एक कविता लेकर तैयार है। आप अपना नाम बताइए और सुनाइए।
4: मेरा नाम है सृष्टि कुमारी, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा शिक्षक है, पेड़ न कटने देंगे, 200 पेड़ कटे जंगल में, उजड़े पूरे 100 परिवार, लेकर खबर भयानक आया जंगल में ताजा अखबार, भालू ने अखबार देखकर किया एक ऐलान, सुनो जंगल की यह खबर ध्यान से सुनो, सभी श्रीमान सुनो, बहुत बढ़ गया मानव का जंगल पर अत्याचार, कितने हरे पर कटे और कितने उजड़ गए परिवार, अब हम पेड़ न कटने देंगे यही हमारा नारा है, हरे पेड़ जंगल की शोभा यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।
2: पेड़ ना कटने देंगे। और इतनी अच्छी कविता के बाद आगे बच्चे क्या लेकर है, क्या सुना रहे हैं?
4: बिलीव इन योर सेल्फ।
2: आपका नाम?
4: माई सेल्फ वर्षा फ्रॉम क्लास 9।
2: तो चलिए स्टार्ट कीजिए।
4: Step up to the challenge. There is no crowd to see. It's just you and the future and where you want to be. Will it pull you forward or push you back in fear? Difficult are choices when the future is getting near. There is such ease in comfort to maintain the status quo. But this isn't what we are made for. This isn't how we grow. The first step is the hardest. As we all know, the first step is the hardest. There is no turning back. You just need to believe in yourself for your future to be on track. This poem was written by Robert Langley.
3: और आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए।
4: दिस इज सुहानी फ्रॉम क्लास 9th। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोम, कैनवस ऑफ सॉइल, पेटल ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर स्लीप, ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, अवेटिंग स्प्रिंग व्हाई डिडन्ट यू, ब्लॉसम ब्लो अ पेंटेड साइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। It is written by Maya Antony. Thank you.
3: और अब प्रोग्राम में एक बच्ची तैयार है स्वरचित कविता सुनाने के लिए, सुनते हैं इनसे।
5: मेरा नाम आराध्या सिन्हा है और आज मैं खुद से लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है मैं नक्शा नहीं नहीं रहा हूँ। मैं कल की कोई आस नहीं, मैं आने वाली कल की आवाज हूँ। मैं भीड़ में चलने वालों में नहीं, मैं भीड़ बदलने की आगाज हूँ। मैं लहर नहीं जो रुक जाऊं, मैं दरिया हूँ जो बहती जाऊं। मैं किस्मत लिखी हुई पढ़ती नहीं, मैं किस्मत खुद की लिखती हूँ। लोगों ने कहा इतना ऊंचा क्यों सोचती हो, मैं हंसकर बोली क्योंकि मैं जमीन नहीं क्षितिज तक देखती हूँ। मैं मंजिल की मोहताज नहीं, मैं मंजिल की पहचान हूँ। मैं एक नाम भर नहीं, मैं अपने सपनों की उड़ान हूँ। मैं डर से सौदा करती हूँ, मैं हिम्मत का व्यापार करती हूँ। आज मेरी आवाज छोटी है, कल ये गूंज बन जाएगी। आज जो एक कहानी लगती है, कल मिसाल बन जाएगी। और जब कोई पूछेगा तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है, मैं मुस्कुरा कर कहूंगी मैं दुनिया बदलने निकली हूँ, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पे अपने अध्याय लिखने निकली हूँ, अपने अध्याय लिखने निकली हूँ। धन्यवाद।
3: बहुत बढ़िया।
2: इतने अच्छे से कविता के बाद और कुछ बच्चियां यहाँ पे खड़ी है, भजन सुनाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना नाम और क्लास बताइए।
6: मेरा नाम साक्षी कुमारी है।
7: मेरा नाम अदिति राज है।
8: मेरा नाम सुहानी कुमारी है।
9: मेरा नाम वर्षा कुमारी है।
10: मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है।

0: और अब इस भजन के बाद थोड़ा माहौल को बदलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सुनते हैं चुटकुला।
1: आप आगे आइए।
2: सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम फैसल खैरी है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं आपके समक्ष एक चुटकुला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक अध्यापिका ने एक छात्र को 1 से 10 तक की गिनती सुनाने को बोला तो छात्र ने क्या कहा? छात्र ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो अध्यापिका ने कहा 9 कहा गया? तो छात्र ने कहा आज सुबह टीवी पे खबर आई कि ठंडी के कारण बुखार से हुई 9 की मौत।
0: हंसी आई तो खुलकर हंसिए।
3: तो यहाँ पे 9 की मौत हो गया इसलिए
0: गायब हो गया। और अब आप लोग अपना नाम बताइए और क्या सुना रहे हैं।
4: मेरा नाम है माया रानी, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम है जिया खाना, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ।
0: सुनाइए।
4: एक टीचर ने परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने को दिया, विषय था आलस क्या है। एक स्टूडेंट ने 3 पेज खाली छोड़कर 4थे पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा यही आलस है। टीचर टोकरी में कितने आम हैं?
5: मैम 10।
4: वो कैसे?
5: जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी ना बन जाएंगे।
0: कुछ लोगों को लगता है बाद में भी हंसी आ रही है।
3: हाँ।
0: आगे
4: यह बताओ कि दुनिया में कितने देश हैं? कर दी ना पागलों वाली बात, दुनिया में बस एक ही देश है भारत, बाकी सब तो विदेश है। धन्यवाद।
0: और अब चुटकुला के बाद आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही है बताइए।
6: आई एम मिस्टी फ्रॉम क्लास 4। आई एम गोइंग टू टेल अ नाइस स्टोरी, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। अ बोर्ड शेफर्ड बॉय डिसाइड्स टू ट्रिक द विलेजर्स बाय शाउटिंग दैट अ वुल्फ इज अटैकिंग हिज शिप। द विलेजर्स रश टू हेल्प बट फाइंड नो वुल्फ। अम्यूज्ड द बॉय रिपीट्स द ट्रिक। व्हेन अ रियल वुल्फ अपीयर्स ही क्राइज फॉर हेल्प बट विलेजर्स थिंक He is joking again and ignore him. The wolf attacks the flock and the boy learns a hard lesson. Moral of the story is lying breaks the trust. Thank you.
7: मेरा नाम अनाबिया अनम है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक सीख की कहानी सुनाने जा रही हूँ, बंदर और चिड़िया। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था। एक बार

0: बहुत तेज बारिश आई। बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से थर थर कांपने लगा। चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही, वह जरा भी नहीं भीगी। चिड़िया ने बंदर से कहा कि यदि वह भी घर बना लेता तो उसे बारिश में नहीं भीगना पड़ता। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। चिड़िया ची ची करते हुए रोने लगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है। धन्यवाद।
1: और आप दोनों अपना नाम बताइए।
2: मैं श्रेयश्री।
3: मैं नैन्सी कुमारी।
1: क्या सुना रही हैं?
3: कविता।
1: सुनाइए।
4: इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ सिंचित है यह स्मृति साला सी। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चीता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निश्चित में शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमित कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
1: तो आप क्या सुना रही है? इंग्लिश पोएम ना?
5: जी दीदी।
1: तो चलिए आप अपना नाम बताइए और स्टार्ट कीजिए।
5: दिस इज मीट रॉय। लाइफ गेम ए लिटल या टेस्टेड मी ईच डे, ड्रीम्स मेड स्टॉर्म्स बट आई फाउंड माय वे। मैनी हेल्ड माय हैंड ऑनली व्हाइल टाइम्स वर ब्राइट, बट व्हेन शैडोज गैदर्ड दे फेडेड फ्रॉम माय साइट। ब्रोकन जस्ट थॉट मी टू स्टैंड ऑन माय ओन, थ्रू एवरी सेटबैक माय करेज हैड ग्रोन। टुडे आई डोंट फॉलो द रोड अदर्स सी, With hope in my heart, I write my own destiny. Thank you.
1: आप आगे आइए, अपना नाम बताइए।
6: मैं नन्ही कुमारी।
1: क्या सुना रही है?
6: शूरवीर। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमय नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में रह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव अकड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो रतिका बीच उज्जाली हो। बाती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हुआ पाता है, यह कवि लिखी गई है राजधारी सिंह दिनकर के द्वारा।
1: आप लोग आगे आइए और आप मिलकर क्या सुना रही हैं बताइए।
7: तिरंगा।
1: ये ग्रुप सॉन्ग है
7: जी।
1: सुनाइए।
7: तेरा

0: आओ फिर से दोहरा ले हम उन वीरों की अमर कहानी। आंधी ओले तूफानों में अंगद जैसे खड़े रहे, गोली की बौछारें झेली अंत सांस तक अड़े रहे। कापा भागे दुश्मन जिनके उद्घोषी ललकारों से, गूंज उठी हर चोटे जिनकी हुंकरों जयकारों से। शशि पाल।
1: बच्चों अंत में एक प्यारी सी बात, फूल चाहे छोटा हो या बड़ा अपनी खुशबू सबको देता है।
2: ठीक वैसे ही हमें भी अपने अच्छे व्यवहार, सच्चाई और प्यार से सबका दिल जीतना चाहिए।
3: और नम्रता, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम फुलवारी का समय तो समाप्त हो रहा है।
4: बिल्कुल अनामिका,
3: बच्चों से विदा ले ले।
4: बिल्कुल,
3: जय हिंद बच्चों।
5: जय

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। संकलन एवं वाचन अनामिका और नहमता प्रवीण का था। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ

0: शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

0: रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए

0: निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर

0: France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. With Vikas, Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Saira. Papers have widely noticed Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका. पहले मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप. 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगा नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन. राष्ट्रीय एसटी आयोग की पहल पर गुमला में प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद आयोजित. सदस्य आशा लकड़ा ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश. राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार. देवघर और गुमला से एक एक टन आम्रपाली आम किया गया दुबई निर्यात. राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी. और झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा. चयनित खिलाड़ी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व. और अब समाचार विस्तार से. झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोडमैप प्रस्तुत करेंगे. इस दौरान झारखंड की भावी विकास रणनीति देश विदेश के उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के समक्ष रखी जाएगी. इस दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से

0: भ्रष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान झारखंड से जुड़े सांगठनिक विषयों और राज्य की वर्तमान हालात पर भी चर्चा हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: For those of you who have worked with me and know me, criticism को मैं वेलकम करता हूँ। आपको कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आप बताइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपके सुझाव जो हैं उनको हम अपने काम में इनकॉर्पोरेट करेंगे and we will make the correction।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहल पर गुमला के डुमरी प्रखंड कार्यालय में जनजातीय संवाद का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और उनके अधिकारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान का संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।
2: आयोग का जो मूलभूत काम करने का तरीका है, जनजातीय समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण और उनका सेफगार्ड करने के लिए काम करती है। इसी निमित्त और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो जनहित से जो योजना विकास प्रक्रिया है उनमें तमाम ऐसे योजना जो आज तक गांव तक नहीं पहुंच पाई है, इन सब के बारे में जानकारी लिए हैं।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड एक एवं ग्रेड दो के कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के साथ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है। झारखंड स्वास्थ्य मिशन रांची के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 लोगों की सामान्य रोग, नेत्र, त्वचा एवं श्रवण संबंधी स्वास्थ्य जांच की गई। आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पलाश, जिला प्रशासन और एपीडा के संयुक्त प्रयास से कल गुमला से 1 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम का दुबई के लिए निर्यात किया गया। इधर देवघर से भी 1 टन आम्रपाली आम की खेप को हरी झंडी दिखाकर दुबई के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना किया गया। संभावित कम वर्षापात और वैकल्पिक कृषि नवाचार, मोटे अनाजों, दलहन तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों पंचायतों तक बिरसा कृषि रथ चलाया जा रहा है। साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि पंचायत के किसानों को विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है।
3: 1 जुलाई से 15 जुलाई तक साहिबगंज जिला में सभी प्रखंडों के पंचायतों में बिरसा कृषि रथ का परिचालन किया जा रहा है। बिरसा कृषि रथ के माध्यम से किसानों को सरकार के विभिन्न तरह के कृषि विभागों की योजनाओं की जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ किसानों को कम वर्षापात की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती करने हेतु जागरूक किया जाएगा।
0: सिमडेगा में पुलिस ने हत्या के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ खिलवाने के 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि मामला कुरडेग और बानो थाना क्षेत्र का है।
4: दो भाइयों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें बड़े भाई सुमन डुंगडुंग ने अपने लाठी से वार किया, जिससे वह जख्मी

0: हो गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें बड़े भाई सवन डुंगू को विधिवत गिरफ्तार किया गया, आगे का हम समझ जाते हैं।
1: राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के कारण अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
2: लो प्रेशर अभी बना हुआ है और तो इसे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में आप देखिएगा कि झारखंड में भी बारिश आपको बढ़ते हुए देखेगी। अभी बारिश लगभग रोज देखने को मिलेगी और 2-3 दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
1: झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने आधार सत्यापन के बाद वर्ष 2026 के लिए झारखंड अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती टीम की घोषणा कर दी है। चयनित खिलाड़ी 10 से 12 जुलाई तक हरियाणा के रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर एक्शन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर, 8 घंटे तक चली कुर्की, शीर्षक के साथ खबर को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है बड़गांई और कांके अंचल के 5 मौजा की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज पर लगाएं रोक, ईडी ने किया पत्राचार। हिंदुस्तान ने लिखा है ट्रेजरी घोटाले में 10 के खिलाफ चार्जशीट। दैनिक भास्कर ने लिखा है वैभव का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगा नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन। राष्ट्रीय एसटी आयोग की पहल पर गुमला में प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद आयोजित, सदस्य आशा लकड़ा ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, देवघर और गुमला से 1-1 टन आम्रपाली आम किया गया दुबई निर्यात। राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा, चयनित खिलाड़ी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं।

मैंने बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है बालिका वधू। आवाज अमित कुमार की है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: चलती का नाम गाड़ी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए खुल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी, इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ऑन अ डांस फ्लोर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं। लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

0: फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।
1: कंगना

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

जोशी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के फिलहाल कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

हेलो हजारीबाग, सभी सुनने वालों को माधवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन से ही जुड़ा है, सड़क सुरक्षा। सावधानी ही सुरक्षा। दोस्तों, सड़क केवल आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी और अनुशासन की परीक्षा भी है। एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए कहा गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज देश में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। हर दिन अनेक लोग दुर्घटनाओं में घायल होते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। दुख की बात यह है कि इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं थोड़ी सी सावधानी बरतने से रोकी जा सकती है। सड़क पर सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले यातायात नियमों का पालन करें, लाल बत्ती पर रुकें, पीली बत्ती पर सतर्क रहें और हरी बत्ती होने पर ही आगे बढ़ें। ट्रैफिक संकेत और सड़क पर बने चिन्ह हमारी सुरक्षा के लिए हैं, इन्हें कभी नजरअंदाज ना करें। यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनें और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनाएं। चरपहिया वाहन में चालक ही नहीं, सभी यात्रियों को सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए। यह केवल कानून का पालन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे सरल उपाय है। एक बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाना चाहिए। तेज गति रोमांच नहीं बल्कि जोखिम है। याद रखिए, आप अपनी मंजिल पर कुछ मिनट देर से पहुंचे ये बेहतर है, बजाय इसके कि आप या आपका परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। एक बात और दोस्तों, आजकल मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना बहुत आम बात है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना या संदेश पढ़ना बेहद खतरनाक है। एक क्षण का ध्यान भटकना भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। दोस्तों, शराब या नशे की हालत में कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। नशा निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए नशा कर वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जब हम वाहन चलाएं तो कुछ बातों का

विशेष ध्यान रखें, जैसे स्कूल के आसपास वाहन धीमी गति में चलाएं। बच्चों को हमेशा सड़क सुरक्षा के नियम सिखाएं और बुजुर्गों को सड़क पार कराने में सहयोग करें। दोस्तों, बारिश के दिनों में कोहरा में रात के समय अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी होता है। खराब मौसम में वाहन की गति कम रखें, हेडलाइट का सही उपयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सड़क की स्थिति को देखकर ही वाहन चलाएं। दोस्तों, सड़क सुरक्षा केवल सरकार, पुलिस या परिवहन विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यदि सड़क पर कहीं दुर्घटना घटित हो तो घायल व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें और तुरंत एम्बुलेंस तथा संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। बातें अभी और भी हैं, हम बातें करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले सुनते हैं हम एक गाना।

दोस्तों, समय पर मिली मदद किसी का जीवन बचा सकता है। आइए हम सभी आज एक संकल्प लें, मैं हमेशा यातायात नियमों का पालन करूंगा, हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करूंगा, तेज गति और लापरवाही से वाहन नहीं चलाऊंगा, वाहन

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगा। नशे की हालत में कभी भी वाहन नहीं चलाऊंगा। दूसरों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। दोस्तों, जीवन अनमोल है। जब भी आप वाहन चलाएं, एक बात याद रखें कि घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए सड़क पर निकलते समय केवल एक बात हमेशा याद रखें, सुरक्षित चलेंगे तभी सुरक्षित पहुंचेंगे। आइए सड़क सुरक्षा को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि सच ही कहा गया है, सड़क सुरक्षा में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए और हर यात्रा को सुरक्षित बनाइए। और फिलहाल आइए मिलकर सुनते हैं एक गाना।

हर दिन का अपना एक इतिहास होता है, 5 जुलाई का भी अपना एक इतिहास है। आइए पलटते हैं 5 जुलाई के इतिहास के पन्नों को और जानते हैं उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं को। 1658 में 5 जुलाई को मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था। 1687 में न्यूटन के प्रिंसिपिया को रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने पब्लिश किया। इसमें लॉ ऑफ मोशन और गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी थी। 1811 में वेनेजुएला के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1922 में नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए। 1950 नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इजराइल में रहने की अनुमति दी गई। 5 जुलाई 1954 बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया। 1959 में इंडोनेशिया में संविधान बहाल किया गया। 1960 में मंगोलिया ने संविधान अपनाया। 1962 अल्जीरिया 132 साल के फ्रांसीसी शासन से आजाद हुआ। 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची। 1977 जनरल मोहम्मद जियाउल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने तख्ता पलटकर देश के शासन पर कब्जा किया। 1994 जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट एमेजॉन की स्थापना की। 1996 में लैब में बनी दुनिया की पहली भेड़ डॉली का जन्म हुआ। 2013 इराक की राजधानी बगदाद की एक मस्जिद पर हुए बम हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। 5 जुलाई को जिन्होंने जन्म लिया उनमें है 5 जुलाई 1950 को पीटी उषा, भारत की दिग्गज महिला एथलीट का जन्म हुआ था, और 1960 में राकेश झुनझुनवाला, भारत के दिग्गज शेयर बाजार निवेशक और आकाशा एयर के संस्थापक का जन्म हुआ। 5 जुलाई को जिनका निधन हुआ, केशव राव सोनवने, महाराष्ट्र के प्रमुख सहकारिता नेता और पूर्व मंत्री का निधन 5 जुलाई 2011 को हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक जिन्होंने सुपरमैन और द गुनीज जैसे फिल्म बनाई उनका निधन 5 जुलाई 2021 को हुआ। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल आइए मिलकर सुनते हैं गाना।

दोस्तों, हेलन केलर अमेरिकी लेखिका, शिक्षाविद और दिव्यांग अधिकारों की समर्थक थी। दृष्टिहीन और श्रवण बाधित होने के बावजूद भी उन्होंने साहस का संदेश दिया। उन्होंने कहा, दृष्टि से कहीं ज्यादा अहम है दूरदृष्टि। जब तक हम दूसरों का जीवन बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम वास्तव में खुद भी कभी खुश नहीं हो सकते। दृष्टि होना एक बात है, लेकिन दूर दृष्टि होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। विश्वास वह शक्ति है जिसके सहारे बिखरी हुई दुनिया भी फिर से प्रकाश में आ सकती है। अपना चेहरा सूरज की ओर रखें और आगे बढ़ते रहें। सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। जीवन एक साहसिक यात्रा है या फिर कुछ भी नहीं, आशावाद ही वह विश्वास है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे सुंदर चीजें न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, उन्हें तो केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। कभी सिर झुकाकर मत चलें, हमेशा अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करें। चरित्र कभी आराम और सुख सुविधाओं से नहीं बन सकता, चरित्र तो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने से बनता है। हेलेन केलर की इन बातों को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। और फिलहाल आइए मिलकर सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में यातायात के महत्व से तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं। प्रतिदिन के कार्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने या सामान की आवाजाही के लिए हम यातायात का प्रयोग करते हैं। चूंकि यातायात हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, ऐसे में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सरकार द्वारा कुछ नियमों को निर्धारित किया गया है। हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि वाहन को पार्किंग का ध्यान रखते हुए विशेष स्थान पर पार्किंग करना चाहिए, निर्धारित लेन में ही वाहन चलाना चाहिए, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए।

सिर्फ जरूरी होने पर ही हॉर्न बजाना चाहिए, ओवरटेक से दूरी बनाकर रखना चाहिए, नो एंट्री का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें गति पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, देखते देखते वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से माधवी को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
3: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का। जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
3: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
4: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ।
3: अच्छा।
4: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया, जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
3: तो ये कब शुरुआत की आपने?
4: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे

0: धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया, और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है, और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांववासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा, और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए, और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में, और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
1: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में ही।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में

0: भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
1: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
0: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
1: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूं जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरह बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
0: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
1: नहीं, मैं जब गाँव से 1995 में आया और गाँव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गाँव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गाँव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गाँव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गाँव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गाँव बनते हैं।
0: अपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
1: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे, वो उनका एक गांव था, और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना, और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं, बहनें, युवा साथी एक बढ़ चढ़कर भाग लिया, और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
0: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
1: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था, हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं। हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे।

0: हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे, या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं, पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं, जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी, अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे, और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई, और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है।

0: है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूं अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाए वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालू

0: वारदात थी मक्का, कर्नाटक से हैं जो, वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़ा प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति शुक्ला को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं एक गाना, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती, अपना ही आकाश पैदा

कर अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर चल दिया जो चीर कर अंधेर है चल दिया जो चीर कर अंधेर है राह में रुकता नहीं जो शेर है जब तलक जलता रहे अंगार है बुझ गया तो राख का एक ढेर है तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे उठा अपना सर और आगे को चल दे कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता जिसकी तूलिका नजर नहीं आती लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

हो। वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ। एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया, बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे
1: जी। 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपने जाने कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन साथियों।

0: साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो। कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और

0: चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओ, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ, यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा अभी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग और फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
0: जिक्र करते,
1: हाँ, कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला
1: था? तो कमाल है, आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
0: जी जी,
1: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
0: अच्छा।
1: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी, क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
0: जी,
1: प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है, तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
0: जी,
1: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम उनका, वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया।
2: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया।

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व, गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया जी, बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई SD बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए ये सब
0: जी,
1: बिहार
0: जी।
1: का सिचुएशन देखकर पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब? जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा,
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अधनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे, एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ,
1: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा टाइटल भी आपने सुना होगा,
0: हाँ
1: मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है
0: जी,
1: ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया।
0: जी
1: मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए, कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं,
0: जी,
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो इसमें 4 सिंगर हैं। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था।
0: जी
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने,
0: जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है, क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय।

0: रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था। सवाल का सही जवाब आपने दिया और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना। तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर। असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। वीवीजी राम जी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने विकसित गांव बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
1: प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की, पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो। सजग रहना है, सचेष्ट रहना है ताकि बिना किसी गड़बड़ और अनियमितता के हम मजदूरों को रोजगार देने का काम और विकसित गांव बनाने का काम के हमारे संकल्प को हम पूरा कर सकें।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए एक वीडियो तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने की अपील की है। धनबाद की सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार ऐसे कॉल आ चुकी हैं। इस संबंध में उन्होंने धनबाद के एसएसपी और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है।
2: हमें प्रिंस खान से धमकी आया 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया। ये जिला प्रशासन को मैंने सूचना दे दिया है। जिला प्रशासन का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, राज्य सरकार का काम है। 2-2 बार, 3-3 बार हम गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हर क्रिमिनल का घर ढहना चाहिए, उसका तो पहले करना चाहिए।
0: भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमी कंडक्टर चिप की पहली खेप कल गुजरात के सानंद स्थित सीजी सेमीकॉन ओसैट प्लांट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जमशेदपुर की बेटी तनीषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया। आकाशवाणी से बात करते हुए तनीषा गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में झारखंड की बेटियों की सराहना की।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी लड़कियां झारखंड से थी, जमशेदपुर से थी, इन सारी लड़कियों की बहुत ज्यादा सराहना की है कि झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य जहां पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो सारी लड़कियां अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
0: सीआईएसएफ ने प्रशासनिक फेरबदल करते बीसीसीएल धनबाद के नए डीआईजी के रूप में राजीव मिश्रा की नियुक्ति की है। वहीं यहां पदस्थापित डीआईजी जितेंद्र कुमार तिवारी का तबादला बीएसएल बोकारो कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @ EIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज।

0: पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के बहुचर्चित 16 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार सिंह को दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मामले में ट्रायल का सामना कर रहे तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सुरेश शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भांग को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कैनबिस की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा पाए सुनील सिंह को बरी कर दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई में कपड़ा दुकानदार पर रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी ललित मीणा ने संवाददाताओं को बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहित बाग को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी।
1: फायरिंग की घटना हुई थी, बाद में जब अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के इंटेंशन से, धमकाने के इंटेंशन से की गई थी। 9 जने पहले पकड़े जा चुके हैं। गाड़ी की बरामदगी हो चुकी है, 5 देसी पिस्टल की बरामदगी हो चुकी है, खोखा और जिंदा गोलियां की बरामद से हो चुकी है और ये व्यक्ति मोहित बाग पकड़ा गया।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रूपये प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कल से 12 जुलाई तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय महिलोंग में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 438 प्रतिभाशाली बाल शतरंज खिलाड़ी अपनी रणनीति, कौशल और बुद्धिमता का प्रदर्शन करेंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह कार्य करते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी करने पर जोर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में SIR अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर, मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन, देशभर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वही लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाहत जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत। और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका, पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई, वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं।

हैं और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो जरूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फार्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा, तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, भाई सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद यही शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे एक और साथी ने इतवार का क्या प्लान है ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

जरूरत। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने के आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज इतवार है फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कहने कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूं, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की

प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया. फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना. के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना. इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत. कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं. हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ. भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं. कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है. मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है. बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं. आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा. हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं. भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है. इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं. तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं. हमें बताइए कि एक किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं.

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सब

भी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के

0: कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम

0: संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। जनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा,
2: जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी की बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने।

जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं। होशियार।

ओ सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ से हम हैं राजकुमार। आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए जाने वाले।

0: जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार, होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार, हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत रांची जिले में इन्यूमिनेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO आज सुबह से ही घर घर जाकर मतदाताओं के बीच फॉर्म का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी BLO को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन सुबह अधिक से अधिक घरों तक पहुंचकर फॉर्म का वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मरांडी ने आज बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात सकारात्मक और सार्थक रही। पूर्व मंत्री और गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। श्री चौधरी रांची में आजसू पार्टी की सहयोगी संगठन अखिल झारखंड महिला संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: एक एक महिलाएं हर एक बूथ पर रहेगी, उसके बारे में उनको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि जेन्युइन वोटर है उनका नाम नहीं कटे और फर्जी वोटर है उसका नाम हटाया जाए। यह ट्रेनिंग अभी भी हमारी पार्टी की ओर से चल रहा है और जो आरक्षण देने की बात है नौकरी में, लोकसभा में भी बिल पास हुआ लेकिन विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा। ये बातें महिलाओं को बताना ज्यादा जरूरी है कि कौन के साथ खड़ा है और कौन आपको धोखा दे रहा है।
0: केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और उसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री बार यौन शोषण सामग्री का वितरण एक आपराधिक अपराध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में आज सुबह एड्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइकिलोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम लोगों और युवाओं ने साइकिल से यात्रा की। मौके पर झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि जागरूकता से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है।
2: प्रथम और मुख्य मुद्दा एक ही है, एड्स के प्रति जागरूकता। और मैं जमशेदपुर के लोगों का, खासकर सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सुबह सुबह यहां आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, ठीक है, तो बचाव ही उसका क्योर है।
0: राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीती देर रात विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब बार रेस्तरा के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। श्री रंजन ने बताया कि जिन पब और बार में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजनबाई के निधन पर गहरा शोक जताया है। गायिका लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई थी। उनका निधन कला एवं संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन चाहेगी,
4: मन चाहेगी,
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
4: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
5: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
4: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
5: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
6: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राप्त

कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

चाहे गीत। और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा। आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत। सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं। उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अभिषेक नायडू दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत इंदिवर के बोल पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन रानी हीरावती?
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
3: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
4: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती हैं
4: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
1: इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह,

0: मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
1: महाराज, अरे महाराज कुछ तो बात बनाइए, रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़िका, हम चले यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारी किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी ईरावती ने महाराज।
1: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकुला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए।
1: हाँ।
0: मैं नाक बाल करके नाग मुद्रा लेके
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहां फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का ताप ने मुझे डस लिया महाराज। ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े
5: हैं। मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: मैं आपका पाल सका हूँ सिनाथ, मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
2: महाराज महाराज।

0: वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा। इन्हें वहां ले जाना होगा महाराज।
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
0: देव की कैसी आज्ञा।
2: देव, कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुकी हो वो क्षमा कीजिए।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
0: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
0: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए।
4: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? और ये गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
2: ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
0: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं ला।
3: जो आप क्या।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। हा? तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
2: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं आखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
2: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
2: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र, क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि ये तुम पर भरोसा करने लगे।
2: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ आ, उसे भगा ले। चल
0: चले।
5: महाराज घबराइए नहीं, मैं समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
6: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
6: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
6: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन,
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंबे की उट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
6: महाराज उधर ना जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: मैं कहां है सांप?
6: महाराज आगे ना जाइए, वहां एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया, पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सखी बकुला वालिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
3: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
3: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रसाद।

0: आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार, महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं थी कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
1: सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि

0: प्रजापति महाराज अग्नि भी
1: प्रमदवन उत्सव में बला रहे
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित
1: प्रमदवन उत्सव

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देवी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो, राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिकी जान पड़ती हैं।
2: हाँ, वही है।
4: प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी

0: क्या है?
1: हाँ महाराज, अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
0: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
1: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
2: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
1: भैया आप भी तो।
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
2: अरे शेर क्या हुआ? क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
4: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
2: वही हुआ ना जिसका भाई था, ठाकुर ने खेल दिया है।
5: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं और डाकू ने भैया को आके यही कह दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े हो। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझ कर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है।
6: उनके प्राण बच गए यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने

0: पकड़ लिया। हलता है हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
1: ओ, फिर क्या हुआ?
0: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
0: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जयसेन,
3: आज्ञा देवी।
2: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
3: देवी की कैसी आज्ञा।
2: मालविका, इधर आओ। प्रस्तुत हो देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया, उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे, आप लजा क्यों रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
5: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
7: मैं और मेरी तन्हाई,
6: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत रांची जिले में इन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO आज सुबह से ही घर घर जाकर मतदाताओं के बीच फॉर्म का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मरांडी ने आज बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात सकारात्मक और सार्थक रही। केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीती देर रात विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब, बार, रेस्तरां के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक जताया है।

0: आई वो करते गए राइट. तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
0: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं. उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी. इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था. 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं. फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था. पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म. उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं. ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो. तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता. तो इस तरह से उन्होंने वो किया था.
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज. जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट. तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम राइट. तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे. वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था. उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी. लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता. तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं. बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है.
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है.
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में. इसलिए ये बहुत जरूरी था. और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे. हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था. लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है. अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं. कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी. लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे.
1: यहाँ गाना सुनते हैं.

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा

0: बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि
0: पड़ेगी
1: एक बार फिर से वो जनाना रोल आ
0: हाँ
1: रहा
0: जनाना रोल आया है,
1: है।
0: तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज तक
0: बहुत
1: उसकी
0: ज्यादा
1: रीलें चलती हैं, और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो
0: करेक्ट
1: वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी
0: ओ
1: है।
0: यस ऑफ कोर्स। हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल।
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुन दा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूं वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ क्या ये वो, तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में,
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा। काला नाग,
1: हाँ
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू
1: हुआ। हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही, बहुत ही, और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसा लग रहा है आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे। मतलब हाँ ठीक है, ओके, ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
0: पूरी
1: वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
0: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: अपना फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट। तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म के बाद। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के, ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं, लेकिन डर बहुत लगता था.
1: बिल्कुल.
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा.

0: जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अच्छा. और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी. पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी. वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी. पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा. ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
1: ओहो करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना. इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था. पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है. आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
1: अच्छा.
0: हाँ. और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है.
1: ओके.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है. और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी. और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की. कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट

0: रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़। एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त और इसलिए उन्होंने किया। वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो
1: काम किया,
0: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: बिल्कुल
1: सारी फिल्में दिखाऊंगी।
0: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
1: बहुत ही अलग,
0: क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया. मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
0: बिल्कुल,
1: पर
0: लेकिन
1: वो इतनी ओवर द
0: टॉप
1: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी.
0: यस yes.
1: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी. तो जो चाहिए वो करो. मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था.
0: अच्छा.
1: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी. और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए. फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं. फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था. तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी. आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म. ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी.
0: बिल्कुल.
1: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है.
0: हाँ.
1: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है.
0: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
1: प्लीज.

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस।
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकथनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी

0: तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ. तो उस समय उन्होंने दोघी की थी. दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे. वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी.
1: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी. और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था. तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा. लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे. तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है.
1: हाँ.
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म,
1: को
0: मिला नेशनल अवार्ड. यस. तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
0: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी. जैसे मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है. आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है. तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था. तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं. मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो. तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है. क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं.
1: राइट.
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे.
1: जी.
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो. अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो.
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है. और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है. तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था. इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे. अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है.
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी. तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर, तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत पलामू जिले में आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों और मार्क वोटरों के गणना प्रपत्र ईएफ को भरवाया गया। लोहरदगा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। रांची के धुर्बा में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज से ही सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में आज सुबह एड्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम लोगों और युवाओं ने साइकिल से यात्रा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 और 23 सेकंड हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नया संकल्प।

कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार जोहार। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब दिन भर के कामकाज को निपटाकर इस समय बड़े प्यार से अपना कार्यक्रम सुन रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बारिश की रिमझिम बूंदों के साथ आज हमारे शाम की स्वागत हुई है, ऐसे में हम भी अपने कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। तो एक मीठे अंदाज में चलिए बातें बहुत सारी होंगी, आज भी हम बातें करेंगे विकास की और अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान देने की, लेकिन इन सब के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा और बस थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल एक मधुर गीत आपके लिए आपके इस शाम के नाम।

ये बात चलिए हम कुछ बातें करें अपने जीवन को नई दिशा देने के संदर्भ में। दोस्तों, वक्त बदला, जमाना बदला, और जमाने के साथ सबसे ज्यादा अगर बदला है तो वो बदला है हमारी जनसंख्या का स्वरूप। आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है हमारे देश में, सभी को रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में रोजगार की समस्या के कारण कई हमारे युवा युवती हैं जो रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके कारण उनके घर में गरीबी है, दुख है, दर्द है और जीवन की कई समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तभी तो आजकल हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्टार्टअप का बड़ा महत्व है। आज हमारे युवा पढ़ लिख कर इतने ज्ञानी वानी कौशल वाले हो गए हैं कि वो खुद को अपने से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई रणनीतियां बनाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में स्टार्टअप जो है वो केवल एक नया व्यवसाय शुरू करने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने और रोजगार सृजित करने का प्रभावी साधन भी है। नई तकनीकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी प्रोत्साहन के कारण युवा अपने नवाचार और कौशल के आधार पर आज सफल उद्योग स्थापित कर रहे हैं। स्टार्टअप का बहुत ही महत्व है दोस्तों आज के हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए। ये युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है, नए और अभिनव विचारों को व्यवसाय का रूप देते हैं। रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ साथ ये कई अन्य लोगों को भी, समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ता है, उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाता है, साथ ही स्थानीय संसाधनों और कौशल का बेहतर उपयोग करता है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देता है। जब हमारे युवा आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा, जब हमारे युवा समृद्ध होंगे तभी हमारा देश भी समृद्ध होगा। इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार के कई प्रमुख अवसर खुलते हैं। स्टार्टअप के जरिए आज ई कॉमर्स और ऑनलाइन व्यवसाय, कृषि आधारित स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आईटी सेवाएं, मोबाइल ऐप एवं सॉफ्टवेयर विकास जैसे कई ऐसे कार्य हैं जिनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके कौशल विकास योजना के तहत हमारे जो युवा युवती हैं अपने लिए स्टार्टअप की शुरुआत किए हैं और इसके लिए सरकार उन्हें ऋण भी सस्ते ब्याज पर उपलब्ध कराती है विभिन्न बैंकों के द्वारा। आज स्टार्टअप के जरिए हमारे युवा हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पाद, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में भी नवाचार कर कई स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं और जिनके जरिए अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। एक तो स्टार्टअप के जरिए उन्हें रोजगार प्राप्त हो रही है, अपने साथ साथ समाज के कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, धन अर्जन हो रहा है और उनके विकास से हमारा देश भी मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों, स्टार्टअप के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई नवीनीकरण से हमारे दोस्त, युवा दोस्त अवतरित होकर इनके संदर्भ में कुछ बातें स्पेशल करके अपने रोजगार की शुरुआत कर रहे हैं, अपने उद्यम की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी स्टार्टअप करके युवा अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इतने सारे अवसर युवाओं के लिए स्वरोजगार के, स्टार्टअप के कई लाभ दे रहे हैं। साथियों, इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है स्टार्टअप के जरिए। चारों ओर आधुनिकता बढ़ती है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर स्टार्टअप के जरिए इन दिनों धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। युवाओं में इन दिनों स्टार्टअप के कारण नेतृत्व और उद्योग संचालन क्षमता बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती से प्राप्त करने की दिशा में स्टार्टअप एक बहुत ही मजबूत माध्यम है। इसलिए युवा दोस्तों, अगर आप में भी कोई हुनर है तो आप अपने हुनर को तराशें, उस दिशा में सही प्रशिक्षण कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त करें। प्रशिक्षण के बाद ऋण लेकर या खुद के पैसे से अपने लिए कोई स्टार्टअप जरूर करें। स्टार्टअप से आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे और अपने घर बैठे आप रोजगार की शुरुआत कर कई लोगों को भी रोजगार से जोड़कर उनका उत्थान कर सकते हैं, उनको
को भी आत्मनिर्भर बना

0: सकते हैं। तो स्टार्टअप की दिशा में हमारे युवा दोस्त आगे आइए और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे कदम भरिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके जहन तक जरूर समझ पहुंच रही होंगी। तो चलिए युवा दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो सुन रहे होंगे, वो भी इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। हमारी कई युवतियां हैं वो भी सुन रही होंगी, वो भी स्टार्टअप के जरिए अपनी ज़िंदगी को संवार सकती हैं, खुद को स्वावलंबी बना सकती हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आज नया संकल्प नई पहल में हम एक ऐसे ही आपके युवा से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, बंटी प्रजापति जी से, जिन्होंने मूर्ति बनाने की कला को स्टार्टअप का स्वरूप दिया है और मूर्ति कला के जरिए आज तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं और उनके सेलिंग के जरिए अच्छी कमाई करते हैं। तो क्या है मूर्ति कला, किस तरह से एक मूर्तिकार बनकर आप स्टार्टअप कर सकते हैं और अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते चलते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: साथियों, तो हमारे बीच आज नया संकल्प नई पहल कार्यक्रम में है एक युवा साथी जो मूर्तिकार हैं, बंटी प्रजापति। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं मूर्तिकला क्या है और किस तरह से मूर्तिकला के क्षेत्र में स्टार्टअप कर आप अपने को स्वरोजगार से जोड़कर अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने।
2: श्रोता साथियों, आज के मेहनत कश कार्यक्रम में हमारे बीच एक मूर्तिकार हैं और काफ़ी लंबे वर्षों से ये इस कार्य में लगे हैं और अभी भी ये मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मनसा पूजा अब काफ़ी नज़दीक है और उसी की तैयारी में लगे हैं। एक दो मूर्तियां यहाँ पर बलि बनकर तैयार हैं, वो अभी प्रगति पर है उनका कार्य। और इस कला में ये कितने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और क्या कमाई होती है, कितना महीना साल भर में सीजन रहता है, इन्हीं सब बातों के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में इन्हें आमंत्रित किया है। बंटी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप ये बताइए कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं, आप एक मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने का कार्य आप करते हैं, ये कितने वर्षों का तजुर्बा है आपका, मतलब कितना वक्त हो गया?
3: लमसम करीबन मेरा इस काम को किया हुआ 15-16 साल से हम लोग स्टार्ट कर दिए।
2: 15-16 वर्ष उसी समय से, मतलब आपके पिताजी या फिर पूरे परिवार जो लगे हुए थे, पिताजी
3: दादा, मेरा पूरा खानदानी है, हम लोग मूर्तिकार है। तो लमसम है, जैसे मेरा 40वां साल चल रहा है।
2: ये 40 साल चल रहा है। अच्छा, तो 40 साल हो गया, 15 वर्षों के तभी से आप इसमें।
3: हाँ हाँ, बस कहीं पढ़ाई लिखाई उस समय तो हम लोग को गरीबी स्थिति था,
2: सही से
3: तो भाव जी से हम लोग नहीं पढ़ा सके। तो देखिए, लाइन में मूर्ति का बहुत अच्छा है, मांग है, डिमांड है, और उस समय का पैसा के बहुत प्रसिद्ध था समय में, इसलिए हम लोग सोचे चलिए माँ का मूर्ति बनाएंगे, एक मांग भी है, अच्छा भी है और कला भी सीख जाएंगे, कहीं जाएंगे तो नाम भी रहेगा।
2: नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ये आप जो 40 वर्षों का तजुर्बा, जो आपने कहा कि 40 वर्षों से कार्य को लगातार करते आ रहे हैं, तो हजारीबाग में ही आपने शुरू से ये काम किया कि कहीं बाहर भी गए?
3: नहीं, ये हम तो काम तो पापा दादा ही से सीखे हुए हैं। हाँ। खानदानी है, मेरा पैसा है
2: और इसी जगह पे,
3: इसी जगह से। हाँ, बाकी ये काम तो बहुत दूर दूर जाके हम लोग। हाँ। करते हैं रांची,
2: अच्छा,
3: रायबचरा, बड़का गाँव, देवसुंगढ़, धनबाद, जहाँ
2: अच्छा,
3: भी काम मिला।
2: अच्छा, जैसे दुर्गा पूजा हुआ या कोई भी वैसा पूजा,
3: जहाँ टेंडर मिलता है वहाँ जाकर हम लोग।
2: अच्छा, तो बाहर जाकर भी मूर्तियाँ आप लोग बनाते हैं?
3: दुर्गा पूजा कैसे 15-20 सेट हम लोग बनाते हैं, तो सब जगह बाहर बाहर ही जाकर बनाते हैं। टाउन में 10-12 सेट रहता है, 10-12 सेट बाहर में हर जगह का टेंडर वगैरह सब, जिससे हो गया आपका कई बचरा राखी कुट्टी जो भी है।
2: अच्छा, काफी दूर दूर जाकर इस कार्य को करते हैं।
3: सीमेंटेड वाला भी काम मिलता है हम लोग को, तो गढ़वा चल जाते हैं, पलामू चल जाते हैं, फिर लोहरदगा चल जाते हैं, समझे ना, औरंगाबाद चल जाते हैं, जहाँ काम मिल जाता है। मंदिर का भी हम लोग सब सारा काम करते हैं।
2: अच्छा,
3: मंदिर का ही बुनियाद से हम लोग सारा चीज़ हम लोग मंदिर का
2: मंदिर बनाने का भी कार्य करते
3: हैं। हाँ, टोटल चीज़ है, मंदिर से लेकर मूर्ति से लेकर सीमेंटेड से लेकर फाइबर से लेकर मिट्टी तक टोटल काम करते,
2: सब कुछ कला में निपुण है।
3: हाँ,
2: अच्छा, चलिए अच्छा ये बताइए कि साल भर में एक वर्ष में

0: मोटा मोटी कितने महीने का आप लोग का सीजन होता है?
1: सीजन तो हम लोग का 6 महीने का है।
0: 6 महीने का,
1: 6 महीने का तो सीजन
0: जैसे दिवाली से शुरू करते हैं?
1: नहीं, ये आपका गणेश पूजा से मानसा पूजा जो शुरू हो जाता है, ये छोटा मोटा पूजा है। जैसे विश्वकर्मा पूजा से आपका दुर्गा पूजा, दीपावली, उसके बाद छठ, उसके बाद सरस्वती पूजा, उसके बाद रामनवमी। हाँ, तो समझ लिए कम महीना छोड़ के ब्रेक कर करके सब काम होता है।
0: अब विश्वकर्मा पूजा में भी अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती है, खरीदारी होती है।
1: ये सब 2 साल से तो अभी थोड़ा कोरोना के लेके तो थोड़ा मंदा है, इस बार से लग रहा थोड़ा सुधार होगा।
0: बिल्कुल सुधार होगा।
1: पहले 2 साल से हम लोग को इनकम जो था बहुत ना के बराबर, बस दाल रोटी जैसे चलता है, बस उतना चल रहा था, फायदा का ना है। पर इस बार हम लोग को उम्मीद है माता रानी से कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा।
0: अच्छा, मोटा मोटी इसमें आपकी मिट्टी की ही खपत है, पूंजी की अगर बात किया जाए तो मिट्टी ही मंगाते हैं?
1: नहीं, टोटल चीज, टोटल चीज।
0: और क्या क्या चीज? जैसे
1: लकड़ी हो गया, लकड़ी बिचाली, सुतरी, मिट्टी, जमीन है, पटरा,
0: ये सारी चीजें,
1: टोटल चीज हम लोग को खरीदना ही पड़ता है। हमको घर का कोई चीज नहीं है।
0: जैसे एक मूर्ति का दाम 5,000 है तो उसमें लागत कितने का होगा?
1: कम से कम आपका 3,000 5,000 का मूर्ति है तो दाम सही मिला तो उसमें 2,500 लागत है।
0: सही,
1: कम कहीं मिलता है तो उसमें 2,000-1,500।
0: अच्छा, 6 महीने का आपका मोटा मोटी ये जो सीजन है, वक्त है, समय है, इसके दर में उसके बाद फिर बाद में तो फिर
1: नहीं तो वही हम लोग का जो मंदिर का जो काम होता है
0: वो उस वक्त
1: वो सब हम लोग का काम चालू कर देते हैं। सीजन में हम लोग को कुछ का काम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि सीजनली काम है, छूटेगा नहीं। मंदिर का काम है कि हमको अगला साल जग करेंगे चलेगा। ये वाला जो काम है हमको पूजा 17 तारीख को, पूजा 17 तारीख को देना है, चाहे जमीन जहाँ भी
0: अभी से आप कर रहे हैं।
1: तो ये है हम लोग का कि जो और सीजन वाला जो काम है हम लोग ब्रेक कर देते हैं। जब सीजन हम लोग का खत्म हो जाता है तो काम चालू कर देते हैं। तो 6 महीना हम लोग उसमें निर्भर है, 6 महीना इसमें निर्भर है।
0: तो 6 महीना के अगर मान के चले मूर्ति से ही मान के चले कमाए तो मोटा मोटी कितना कमा लेते हैं?
1: जैसा क्या है ना कि अभी जैसे अभी तो कॉस्ट में घर में क्या है ना कि बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई में
0: सब ठीक है, तभी सारी चीजों को देखते हुए मोटा मोटी
1: जैसे क्या ना कि अभी मोटा मोटी क्या है कि साल भर में 6-5 लाख रुपया काम होता है
0: ना,
1: उसमें मान चलिए आधा खर्चा
0: आधा
1: कमा, उसमें क्या है कि उसमें पूरा परिवार हम लोग जुड़ जाते हैं। सरस्वती पूजा में क्या है कि पूरा फैमिली, बच्चा से लेकर परिवार, माता पिता, सब भाई बहन सब जुड़ जाते हैं। रात दिन अपना अपने घर में काम रहता है, हम लोग मिलजुल के हो जाता है।
0: अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि आप आपके परिवार में कुल कितने सदस्य, अभी कौन कौन साथ में है? सब साथ में ही सब लोग?
1: हाँ, हम लोग चार भाई साथ में, साथ में है।
0: पिताजी
1: नहीं थे, बचपन में गुजर गए थे।
0: माता जी
1: है,
0: सब साथ में ही आप लोग?
1: हाँ, सब साथ में।
0: सबका गुजर बसर आपका इसी से होता है?
1: दो तो
0: इसी से होता है,
1: दो भाई हम लोग साथ में मिलकर ही सब काम करते, 3 भाई, 2 पढ़ाई कर रहे हैं, समझे ना। तो और सीजन में क्या होता है कि इसे पढ़ाई नहीं रहता है तो सीजन में बोलते थोड़ा हेल्प कर दो, उसमें क्या होता है उसका हाथ भी साफ हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है, उन लोग का टाइम भी कट जाता है।
0: अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके?
1: मेरे बच्चे 3 हैं,
0: अभी पढ़ाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, पढ़ाते हैं।
1: हाँ, मैट्रिक में है।
0: अच्छा,
1: एक
0: स्कूल में पढ़ता
1: है, सस्ती विद्या मंदिर
0: जी, बहुत अच्छा।
1: और एक बच्ची है वो केड़ी चिल्लर में पढ़ते हैं, 14 साल का उम्र है,
0: बहुत बढ़िया।
1: एक छोटा बच्चा है वो 12 साल का है, वो जेके एंजल में पढ़ता
0: है, बहुत बढ़िया। यानी सारे बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और सभी का खर्चा आप इसी में निकालते हैं, खुशहाल जीवन है आपका?
1: खुशहाल जीवन तो है, ताकि हम जो हिसाब से देखते हैं ये क्या है कि इसमें इस काम में क्या है कि काम करते हैं तो थोड़ा भगवान का मन में तजुर्बा हो जाता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। बाकी तो कोई भी काम में तो मेहनत बिना कुछ है नहीं, चाहे सीमेंटेड वाला काम करिए, ईटा चढ़ाना पड़ेगा, बालू चढ़ाना पड़ेगा, चाहे लेबर वाला काम करने जाइएगा, मिट्टी खोदना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि मेरा कला दिया है तो थोड़ा अच्छा, इसमें क्या होता है कि थोड़ा इसमें इज्जत है, मिस्त्री जी आइए बैठिए, थोड़ा बैठिए, इसमें क्या है थोड़ा सा माँ का काम करते ही साथ लगता है, कुछ नाम भी है
0: और माँ का आशीर्वाद भी,
1: आशीर्वाद है। हमको लगता है कि इससे अच्छा काम हम लोग को सर्विस छोड़ के, अगर सर्विस ना रहे तो इससे अच्छा काम कोई।
0: अच्छा, खास तौर से देखते हैं कि खास तौर से एक विशेष वर्ग के लोग आते हैं आपकी बात करें तो वही लोग इस काम को करते हैं कि और भी कुछ लोगों को करते हुए आपने देखा है?
1: नहीं, इसे ये हम लोग का कास्ट का जो काम है ना,
0: हाँ हाँ,
1: तो बहुत सारा हम लोग प्रजापति है,
0: प्रजापति। हाँ,
1: तो अभी जैसे कि हजारीबाग में मटवारी में है जो बहुत सा प्रजापति है।
0: हाँ,

0: तो लोग क्या गार्जियन बढ़िया सपोर्ट है तो पढ़ाई लिखाई से सर्विस नौकरी ज्यादा बेसिक कर रहे हैं। मूर्ति उर्ति का काम उन लोग नहीं जानते हैं। वो अभी बहुत सारा टोली में भी प्रजापति है, उसमें क्या है कुल चक्का का काम जाना गिलास प्याली जो चलता था पहले मिट्टी का सुवा घड़ा उड़ा है उन लोग में ज्यादा फेमस है। तो हाँ, तो उससे क्या है ना कि उसमें कि आदमी है मेहनत है, अभी डेट में ऐसा मेहनत नहीं करने खोजता बच्चा लोग, तो लेबर जैसे करके रखना पड़ता है लेबर का मजदूरी।
1: पंडित जी एक चीज बताइए कि जैसे कोई नई पीढ़ी कोई चाहे कि जैसे कि वो प्रजापति नहीं है और कोई वह चाहता है कि हम भी सीखेंगे तो क्या
0: बहुत सारा है,
1: सीख के बहुत से
0: बहुत सा कलाकार है अभी
1: कर सकते हैं,
0: जैसे रविदास है मेरा ही स्टाफ है जो पद्मा का है कोई चंदन
1: होता है
0: तो लोग क्या है ना कि शुरू से ये लाइन में घुस गया है, देखा कि अच्छा है इज्जत है कलाकार बन गया है, इसमें कोई जात का नहीं है कि प्रजापति है कि
1: नहीं।
0: सभी
1: कोई भी व्यक्ति
0: बंगाल का जैसे देखिए पाल लोग लोग हैं, पाल लोग सब पाल लोग कलाकार है, तो इसमें कोई जात भाव नहीं है, कलाकारी में जिसमें सरस्वती जो विद्या होती है जिसमें विराज गया हो अपना,
1: तो कोई भी व्यक्ति आके कोई भी युवा आके
0: मन हो तब
1: ट्रेनिंग अगर
0: मन में साफ
1: सीखना है काम
0: तो जिसका मन में क्षमता है सीखने का वही सीख सकता है।
1: कितना वक्त लग सकता है लगता है इसमें सीखने में?
0: कहने मतलब है कि अगर तजुर्बा बढ़िया है तो 2-3 साल में बढ़िया
1: मिसाल तो लगेगा।
0: हाँ,
1: एक कला है एक एक अंग का निर्माण करना
0: है ना, पूरा बनारस से लेकर पेंटिंग से लेकर आपको उसको तराशना है, एक आकार देखना है मिलाना है बहुत सा, भी क्या है कि बनाते बनाते उसको लगता है कि नहीं यहाँ गलत है और होना चाहिए सुधार और अच्छा बनना चाहिए। जैसे पहले क्या था ना कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो आदमी इससे काम करता था तो चलो ठीक है अच्छा लगा, अभी क्या है ना कि नहीं थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा ये फेस मिला मोबाइल में देख कर दिखता है कि थोड़ा
1: यही चीज मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि जैसे आप किसी भी प्रतिमा को बनाते हैं तो उसका एक फोटो तो सामने रखते होंगे उसी के अनुसार गढ़ते होंगे।
0: हाँ, जैसे क्या है कि हमसे ये मूर्ति बना रहे फोटो से आधार बना रहे तो नेट में मंगाए तो इसमें थोड़ा मोड़ा अपना से चेंजिंग करेंगे, जो हमको खराब लगेगा उसको चेंज कर देंगे, जो अच्छा लगेगा उसमें फोकस करेंगे। हाँ, और अगली बात कि क्या कि इसमें हमको लगेगा माता का चेहरा थोड़ा सा शांत है उसको हंसमुख करना है तो उसको हम अपने तरीके से करना पड़ता है। तो जैसे कुछ है कि कुछ अपना दिमाग है कुछ देख के काम करना पड़ता है, मगर हाँ ये है कि अभी जो है कि अभी बहुत सारा साधन हो गया है काम करने का, हमारा जो हिसाब से अब जैसे अभी मूर्ति जो बनता है वो हिसाब से अभी यहाँ हजारीबाग में पैसा नहीं है, अगर बंगाल चल जाइए पटना चल जाइए बिहार चल जाइए तो वहाँ दुर्गा पूजा का मूर्ति बनता है तो 50,000-60,000-70,000 स्टार्ट है, जिससे लाखों 50,000,000-50,000,000 रुपये तक ले जाता है। यहाँ क्या है कि छोटा जगह है तो 20,000-25,000 से स्टार्ट 50,000 तक आटे, तो जिस हिसाब से मेहनत उस हिसाब से यहाँ पैसा नहीं है।
1: और अगर बाहर जाके आप बनाते होंगे तो उसमें तो पैसा अच्छा मिलता होगा।
0: हाँ, तो वहाँ है क्या कि यहाँ पर क्या है कि परमानेंट है, जो जन्म जुगिया बना रहे हैं तो आशा रखे हुए हैं कि यहाँ जो मिस्त्री मेरा बना देंगे और उसको छोड़ देते हैं तो फिर अगले बार फिर कहेंगे आज हमको बंगाल से बुलाया चलिए आप मूर्ति बना दीजिए, कल हो सकता है हमको छोड़ के फिर कल नेपाल से बुला लें तो मेरा परमानेंट नहीं है, यहाँ 10 रुपया थोड़ा कम ही है तो थोड़ा अपना
1: लेकिन है। परमानेंट है। हाँ, लोग आकर के ले जाते हैं।
0: हाँ, ये बोलता है कि मेरा ये परंपरा है बुजुर्ग है, जब तक हम इसको नहीं हम ना बोलेंगे तब तक ही निकल नहीं सकता, इसको पूरा फिक्स किया हुआ बनाना है, रह गया पैसा की बात है साल में अच्छा महंगाई देख के 1,000-2,000-3,000 बढ़ाना है।
1: कुछ पैसे सेविंग करते हैं, सेविंग करने का मौका मिलता है भविष्य के लिए कुछ बचाते हैं पैसे
0: बचाते हैं जिससे क्या
1: बहुत
0: थोड़ा मोड़ा बचाते हैं तो बच्चे लोग को जैसे शादी ब्याह के लिए
1: वही
0: तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा अपना
1: बैलेंस लेके चलना चाहिए
0: थोड़ा मोड़ा, यही बैलेंस है जो हम लोग का जो मंदिर का जो काम होता है उसमें उसमें फायदा हो जाता है, उसमें क्या है कि सारा चीज हम लोग को कोई पूंजी लगाना नहीं पड़ता है, जगह में जाके सारा मेटेरियल पार्टी देता है, हमको सिर्फ ठीका ले लेते हैं कि हमको इतना दिन में बना के आपको देना है 4-5 महीना में, एक काटी तक आपको हमको नहीं देना पड़ेगा, आपको सारा चीज देना पड़ेगा, तो हम लोग इसे टाइमली 9-5 जाते हैं, बहुत सारे आदमी व्यवस्था दे दिया रह जाइए खाने पीने की व्यवस्था दे दिया रह जाइए, क्या है इतना दूर से आने जाना करिएगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप यही रह के बनाइए अर्जेंट है तब नहीं तो फिर आपका जो बड़का काम ये काम करने के लिए तो वहाँ 100 रुपये मेरा तेल जाने में लग जाएगा 300 रुपये, तो बोलता आप इतना दूर जाइए क्यों, आप हफ्ता में एक बार जाइए, हफ्ता में जाइए तो कुछ पैसा भी अपना लेके जाइए घर परिवार को देने के लिए।
1: तो श्रोताओं ये थे।

0: बंटी प्रजापति जो कि स्थानीय कुमाटोली हजारीबाग में एक लंबे समय से 40 वर्षों तक इन्होंने कहा कि तजुर्बा है मूर्तिकार मूर्ति के निर्माण में और मूर्ति बनाकर और 6 महीने का इनका सीजन होता है और बाहर भी जाकर के ये काम करते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं और आकाशवाणी हजारीबाग की तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि उज्ज्वल हो और भी आप अच्छा पैसा कमाएं, ढेर सारी मूर्तियां बाहर जाके आपको टेंडर मिले। के साथ हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये थे हमारे बंटी प्रजापति मूर्तिकार जो मूर्ति कला के जरिए अपने स्वरोजगार की शुरुआत की है, स्टार्टअप को जन्म दिया है और अपने साथ साथ अपने परिवार वाले को भी आत्मनिर्भर बनाया है और आज समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो बंटी प्रजापति से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अशोक कुमार और हम समझते हैं कि इनकी बातों से आप भी काफी लाभान्वित हुए होंगे। साथियों, तो अब वक्त हो गया है कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल से अलविदा कहने का, लेकिन इस वायदे के साथ कि दोस्तों जल्द मुलाकात होगी और रोजगार के नए रास्ते तलाशेंगे मिलकर और अपने जीवन को सुखद राह से जोड़ेंगे। तब तक के लिए नया संकल्प नई पहल से दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम युवा तरंग।

कार्यक्रम युवा तरंग सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, मानसून ने दस्तक दे दी है, रिमझिम बारिश की फुहार दिन में रात में होती ही रहती है, कभी धूप कभी छांव। ऐसी धूप छांव की तरंगों में जिंदगी जो है बिल्कुल जीवन सी हो गई है, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद जब बारिश की बूंदें धरती पे पड़ती है और तन पे पड़ती है तो धरती और तन मन सब कुछ खिल उठता है ताजगी से। और ऐसे ताजगी भरे शाम में जब मिले हैं बारिश के बाद, तो चलिए युवा तरंग में हम सबसे पहले दोस्तों आपको लिए चलते हैं अपनी कार्यक्रम की ओर से एक खूबसूरत गीत के साथ, एक खूबसूरत वाद्यों की ओर।

0: इस प्यारे से गाने के बाद चलिए युवा दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं गंभीर समस्या की ओर, जो कि आज हमारे देश में बहुत ही काली बद्री की तरह मंडरा रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या का बढ़ना दोधारी तलवार जैसा है। इसके कुछ तो फायदे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। जनसंख्या किसी भी देश की, आप सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मानव संपदा होती है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वरूप और स्वस्थ और कुशल हो, तो वह देश के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन दोस्तों, यदि जनसंख्या का उचित प्रबंधन ना हो, तो यही विकास में बाधा भी बन सकती है। अब जनसंख्या के विकास के कई अवसर हैं दोस्तों। जैसे अधिक जनसंख्या देश को कार्य करने में बड़ी श्रम शक्ति प्रदान कर सकती है। कुशल और उत्पादक जनसंख्या उद्योग धंधे को बढ़ावा देने में भी सहायक होती है। अधिक जनसंख्या, कुशल जनसंख्या कृषि और सेवा क्षेत्रों के में भी गति देती है। जी हाँ, यही यदि जनसंख्या ऐसी कुशल हो, तो वह कृषि, उद्योग, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती है। बड़ा उपभोक्ता बाजार, जनसंख्या बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है, जिससे व्यापार, निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही युवा दोस्तों, जनसंख्या नए विचार, तकनीक, स्टार्टअप और उद्यमिता को भी आगे बढ़ाती है, राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देती है। प्रशिक्षित और हमारे सक्षम नागरिक देश की उत्पादकता बढ़ाकर उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाती है। ऐसे में जो मानव संपदा है, एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है किसी भी देश की। साथियों, ये तो हुई बढ़ती जनसंख्या के विकास के अवसर से संबंधित बातें, जो कि हमारी बढ़ती जनसंख्या देश के सहयोग में, देश को मजबूती देने में सहायक है, वो एक पक्ष हुआ। अब जनसंख्या की कई चुनौतियां भी है दोस्तों। जैसे जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार देना सरकार के बस में नहीं है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी जब होती है तो पैसे के अभाव में गरीबी बढ़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ता है। हर को शिक्षा आज मुहैया कराने की बीड़ा उठाई है हमारी सरकार, फिर भी कुछ लोग इससे अछूते रह जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा भी ढंग से सब तक नहीं पहुंच पाता। भोजन, पानी, ऊर्जा और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी होने लगती है अधिक जनसंख्या से। साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होता है, वनों की कटाई होने लगती है, घर बनाने के लिए, कारखाने खोलने के लिए, और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी होता है इस जनसंख्या की वृद्धि के कारण। शहरीकरण, यातायात, कचरा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ अधिक जनसंख्या के कारण किसी भी देश में पड़ता है, और इसका साक्षात ज्वलंत उदाहरण है हमारा देश भारत। इन सब के अलावा आय और संसाधनों के आम सभा वितरण में असमान वितरण में भी सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलती है। ऐसी चुनौतियां आती है जिससे कि समाज में असमानता बढ़ती है। कुछ लोग जिनके पास रोजगार होते हैं, उनके पास काफी धन हो जाते हैं, और जो लोग गरीब होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी रह जाते हैं। इसलिए जान लीजिए दोस्तों कि बढ़ती जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं, बल्कि उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। यदि जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार से जोड़ा जाए, तो वही जनसंख्या देश के विकास की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इसलिए साथियों, संतुलित जनसंख्या वृद्धि और प्रभावी नीतियों के माध्यम से विकास के अवसरों का लाभ उठा चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। बस जरूरी है कि जनसंख्या को सही दिशा में मोटिवेट करने का, उन्हें प्रेरित करने का, ताकि वो कुशल बनकर अपने देश के पहिए बन सके, उसे खोखला ना बनाए। तो ये भी हमारी दोस्तों बातचीत जनसंख्या के होने से, अधिक होने से देश कैसे प्रभावित होता है, अगर अधिक जनसंख्या हुई तो क्या फायदे हो सकते हैं देश को, और अधिक जनसंख्या के होने से क्या सामने चुनौतियां आ सकती है, देश के सामने क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन सब विषयों पर हमने बातें की कि अगर जनसंख्या को हम कुशलतापूर्वक प्रबंधित करें, कुशल नागरिक बनाएं अपनी जनसंख्या को, तो कृषि, उद्योग, कला, संस्कृति, खेल कूद, हर क्षेत्र में विकास होगा, और हमारा देश एक विकसित देश के रूप में पूरे विश्व में आच्छादित हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि हमारी ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। बातें और भी होंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आइए सुनते चलते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो।
4: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दी,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: और दोस्तों चलते चलते एक प्यारा सा गाना आपके लिए, और उसके बाद कुछ और जरूरी बातें।

और इस प्यारे सी गाने के बाद चलिए युवा दोस्तों, हम आपको लिए चले समय की कीमत की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच है एक साथी जो बता रहे हैं कि किस तरह सफलता के लिए समय तालिका कितना महत्व होता है। हमारे जीवन में समय के महत्व को जानने के लिए आइए सुनते चलते हैं ये वार्ता।

0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरीय शिक्षिका श्रीमती विम्मी प्रियदर्शनी जी से, जो अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग में कार्यरत हैं। विम्मी जी हमें आज जानकारी देंगी, एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन में समय का क्या महत्व है इस विषय पे। तो सबसे पहले विम्मी जी, आपका इस कार्यक्रम में हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार
0: विम्मी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफलता के लिए कर्म के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है, इस बारे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं जी। और समय का प्रबंधन के लिए उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने समय तक के लिए एक समय तालिका बना लेनी चाहिए, कितने बजे तक में वह कितना काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर वह अपना तालिका बनाए और उसमें वह अपने लिए पढ़ाई के लिए कितने समय होने चाहिए, सफाई स्वच्छता के लिए कितने समय देने चाहिए तथा अपने रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए और समाज की सेवा के लिए कितने समय देने चाहिए, इस तरह से वह सारे समय का प्रबंधन करें, सारे समय को बांट दें और समय का प्रबंधन करें तो वो एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
0: जी। विम्मी जी, उचित समय पर यदि कोई विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं तो हमेशा फलदायी होता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे छात्राओं?
1: जी हाँ, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि उचित समय पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा
0: जी जी।
1: तो इसलिए समय रहते ही हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हर एक समय, हर एक पल बीतता जा रहा है जिसका हमें बोध नहीं होता है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता है कि हम हर एक क्षण, एक पल, एक समय खो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हर एक समय को हम सदुपयोग करें। सदुपयोग समझना बहुत जरूरी है कि सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है।
0: बहुत जरूरी है।
1: समय का सदुपयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब की ज्ञान तो जरूरी है, वह तो किताब की ज्ञान से तो सिर्फ उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं
0: जी।
1: किताब के ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें अपने व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं
0: जी।
1: हम उन चीजों को, जो चीज हम किताबों से सीखते हैं उनको हम व्यवहारिकता में कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तब हम एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
0: जी। जो व्यक्ति उचित समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं विमी जी, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
1: हाँ, ये सही है कहना कि उचित समय पर तैयारी नहीं करने पर सफलता संदिग्ध रहती है। उचित समय कौन सा समय है जिसे हम उचित समय कहेंगे
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है।
1: ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय है जो उचित समय है। कोई कहता है शाम का समय हमारे लिए उचित समय है, कोई कहता है हमारे लिए रात का समय उचित समय है। नहीं, हमारे लिए उचित समय जो अभी वर्तमान का समय है वही हमारे लिए उचित समय है और इस वर्तमान समय को ही हमें अपने काम में लगाना चाहिए। हमें अपनी अध्ययन के लिए और अध्ययन से प्राप्त किए हुए ज्ञान को व्यवहारिकता में लाने के लिए हमें लगाना चाहिए, तभी हम एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अन्यथा हमारी सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी
0: जी। सफलता के लिए लक्ष्य तय करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच जाएं। इस संबंध में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें विद्यार्थियों को।
1: सफलता के लिए सही समय पर हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, चारों ओर हजारों तरह के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए अवसर वही ढूंढना है जो अवसर हमारे लिए उचित है और हमें उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए, तभी हम सफल विद्यार्थी

0: बन सकते हैं। लक्ष्य का तय नहीं करने से हम मार्ग से भटक सकते हैं। हमें कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग अलग अलग रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन हमें एक ही मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारा लक्ष्य हो। उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीवी जी, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में आपको सलाह दें।
0: विद्यार्थी हमारे आज के दौर में, सच सही बात है कि आज के दौर में वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई तरह की चीजें परोसी जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, और वो जो चीजें उन्हें परोसी जा रही हैं, जो उन्हें बहुत लालायित कर देती हैं, और वह अबोध बालक होते हैं जिन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह गलत रास्ते की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है। उन्हें लगता है शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मनोरंजन करने का यही एक समय है, और वह अपने माता पिता से छिप करके, अपने शिक्षक गणों से छिप करके, वह अपने मनोरंजन के लिए ज़्यादा समय देते हैं, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए ज़्यादा समय दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए शिक्षा पहले है, सबसे ज़रूरी है कि हम आधार किसे बनाएं। आधार अगर हमारा ना होगा तो हम उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आधार हमें सबसे पहले बनाना है। आधार बनाने का मतलब है सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा अगर हमने ले लिया तो फिर हम आगे उसके ऊपर कई तरह की इमारत खड़े कर सकते हैं।
1: जी।
0: इसलिए ये जरूरी है कि पहले शिक्षा लें, उसके बाद ही किसी दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान भटकाएं।
1: जी मिमी जी, कुछ और सवाल है जिससे मैं पूछना चाहूंगी। शिक्षा के संदर्भ में समय का क्या महत्व है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दें।
0: शिक्षा के संबंध में समय का बहुत महत्व है। अगर यूं कहें तो हर एक मामले में समय का महत्व होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो समय है वह सीमित समय है।
1: जी बिल्कुल।
0: एक सीमित समय तक ही हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन निर्वाह के कार्य में लग जाते हैं और अलग अलग कार्यों में हमारा ध्यान चला जाता है, हम दूसरे कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। और आज के दौर में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अपने प्रगति को दिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके साथ समय को सही प्रबंधन करें, समय का सही प्रबंधन करें, और समय के साथ वो अपना तैयारी करें, तालमेल बिठा करके चलें, उसमें तभी वह सफल विद्यार्थी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा के संदर्भ में समय का बहुत महत्व है, इस बात को विद्यार्थियों को समझना होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या आत्म मंथन की आवश्यकता है?
0: हाँ, यह बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में हर एक विद्यार्थी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। इसलिए आत्ममंथन की आवश्यकता है क्योंकि हर एक विद्यार्थी की योग्यता अलग अलग होती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय पर आगे चल रहा है तो मैं भी उसी विषय पर आगे चलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्ममंथन करके देखें कि हमारे लिए हमारी योग्यता किसमें सबसे अधिक है, और हमारी योग्यता जिसमें सबसे अधिक है हमें उसमें ही ज़्यादा काम करना चाहिए और अपनी योग्यता को दिनों दिन

0: खाना चाहिए। आत्ममंथन की जरूरत इसलिए भी है
1: जी
0: कि विद्यार्थी शिक्षा का महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें कई बार शिक्षा बोझ के समान लगती है या आदेश के समान लगती है। उन्हें लगता है कि शिक्षा सिर्फ माता पिता का आदेश है जिस कारण से शिक्षा लेनी पड़ती है, या शिक्षकों का बहुत दबाव बना रहता है इसलिए शिक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, ये आत्ममंथन करनी चाहिए उन्हें कि शिक्षा की आवश्यकता कहाँ है, कौन से जगह पे हम बिना शिक्षा के हम कौन से जगह पे खड़े हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं। अगर हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए।
1: जी अच्छा, अंत में एक सवाल और भी हम पूछना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थियों के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, तो इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानती हैं?
0: कोरोना काल में तो सच पूछा जाए तो विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ा है, उसी तरह से विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों को जितनी अध्ययन होनी चाहिए थी एक साल में उसका 50% ही वो अध्ययन कर पाए।
2: तो अभी युवा दोस्तों आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम युवा तरंग, जिसमें विमी जी समय के महत्व को बता रही थी। इसी के साथ कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी सेवा से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने में रचनात्मक भूमिका के लिए कर्मचारी संगठनों की सराहना की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आयोग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकायत आयोग से कर सकते हैं। पूर्व मंत्री और गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। श्री चौधरी रांची में आजसू पार्टी की सहयोगी संगठन अखिल झारखंड महिला संघ के राज्यस्तरीय अधिवेशन के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। मंत्री आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है श्रमिकों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश।

प्रणाम। कहते हैं श्रमिक बंधुओं कि अगर बहुत ज्यादा तपिश के बाद थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ जाती है धरती पर, तो मानो फिर से जीवन लौट आती है धरती पर। सभी पेड़ पौधे जीवित हो लहलहाते लगते हैं अपने जीवन में, और साथ ही साथ मानव जीवन भी खिल उठता है बारिश की बूंदों में भीग कर। और जो परेशानियां होती है सारी लगती है जैसे गुम हो गई और अचानक से जिंदगी में हरियाली छा गई। तो दोस्तों, आज शाम भी रिमझिम बारिश होती रही है और इस वक्त आप सभी अपने घर में बैठे चाय कॉफी का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए श्रमिक बंधु, आज भी अपनी परंपरा को निभाते हुए अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी योजनाओं के संदर्भ में जो आपकी जिंदगी को सुदृढ़ और समृद्ध बना सकती है, आपको रोजगार से जोड़ सकती है और आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। लेकिन इनके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी प्रतीक्षा और बस थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा गाना हमारे कार्यक्रम की ओर से।

0: और इस प्यारे से गाने के बाद चलिए श्रमिक बंधुओं, आज हम आपको बताएं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, जिसे PMSVA निधि कार्यक्रम भी कहते हैं। बताएं कि किस तरह से ये आपके लिए लाभकारी है, किस तरह से इसका लाभ उठाकर आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। श्रमिक बंधुओं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स जिसे कहते हैं, और छोटे सूक्ष्म उद्यमी जो होते हैं, उनको बिना किसी गारंटी के किफायती लोन प्रदान करने वाली एक विशेष योजना है। इसके तहत लोन लेकर वो अपने स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 15,000 से लेकर 50,000 तक का लोन आसान किस्तों पर इन छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराया जाता है, जो उनके लिए काफी उपयोगी होता है। लघु उद्यमी छोटे व्यापारियों को कैसे फायदा होता है इसके तहत, चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। यह योजना सबसे पहले किन्हें फायदा पहुंचाता है ये आप जान लीजिए। श्रमिक बंधुओं, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, यह योजना छोटे दुकानदारों, फल सब्जी विक्रेताओं, ठेले वाले और दैनिक आय कमाने वाले के लिए एक संजीवनी की तरह है। उनके स्टार्टअप के लिए 15,000 से 50,000 की राशि काफी होती है, जो बिना गारंटी के छोटे कारोबारियों को अपनी संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और लोन मिल जाती है। ऋण की राशि शुरुआत में 10,000 या 15,000 का लोन उन्हें मिलता है अपने रोजगार की शुरुआत करने के लिए। यदि आप समय पर लोन चुकाते हैं तो आपकी साख बढ़ती है और आप दूसरी बार 25,000 तक का लोन ले सकते हैं।
1: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हाँ, तो श्रमिक बंधु हम बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में, जो किस तरह से हमारे छोटे व्यापारी जो साइड में रोड के अपना ठेला चलाते हैं या छोटा सा गुमटी करके रखते हैं, उनके लिए फायदे पहुंचाते हैं। इस योजना के तहत 15,000 से लेकर 50,000 तक का लोन आसान किस्तों पर उपलब्ध होता है, जो छोटे व्यापारियों के लिए बेहद उपयोगी होता है, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर पाते हैं। लघु उद्यमियों के लिए यह उद्योग कैसे उपयोगी है ये तो हमने बता दिया कि बिना गारंटी के लोन मिलती है और लोन सस्ते दर पे मिलती है। अब आपका ये सवाल होगा कि आखिर इस हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए पीएम स्वनिधि आधिकारिक पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन माध्यम से नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर या नगर पालिका नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से जाते हैं तो सीधे पीएम स्वनिधि आधिकारिक पोर्टल या जन समर्थ पोर्टल

पर जाए और अप्लाई करें। आवेदन प्रक्रिया है, होम पेज पर अप्लाई फॉर लोन लिखें और इस पर क्लिक करें। जब आप अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके बाद ओटीपी आपको मिलेगी जिसे वेरीफाई कर लें और अपनी पात्रता के अनुसार 15,000, 25,000 या 50,000 का लोन प्राप्त कर अपने छोटे रोजगार की शुरुआत कर अपने जीवन में खुशहाली लाए, अपने घर में धन संपदा लाकर हर दिन बरसात करें खुशियों की। आवश्यक जानकारी, अगर आप इसे कार्यालय के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं इस स्वनिधि योजना का लाभ, तो कार्यालय भी आप जन समर्थ पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपने क्षेत्र की नगर पालिका या नगर निगम ऑफिस में जाएं, सीधे सहायता मिलेगी। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं या बैंकिंग जो होता है करेस्पॉन्डेंट या किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है उनके एजेंट से मिले जो आपका आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने में पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जो होता है वो बता दें कि आपका पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक में पासबुक होना चाहिए और वेंडिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स के होने जरूरी है। 4 आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, पहला पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और वेंडिंग सर्टिफिकेट। अगर ये 4 चीजें हैं आपके पास तो आसानी से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ श्रमिक बंधु आप उठा सकते हैं और अपने लिए कोई भी छोटे से रोजगार की शुरुआत कर अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही फायदे वाली योजना। तो आइए हम सोचते हैं कि आप अपने घर में अगर कोई रोजगार करने वाले व्यक्ति हो तो उसे जोड़ सकते हैं, या समाज के कोई व्यक्ति हो जो अब तक रोजगार से नहीं जुड़े हैं तो उन्हें भी रोजगार से आप जोड़ सकते हैं या स्वयं भी जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस योजना का लाभ, प्रधानमंत्री स्वनिधि का योजना का लाभ आप जरूर उठाएंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। और अब बारी है आपको एक और प्यारे से गीत की ओर ले जाने का, लेकिन उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे और मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जो आपको जानकारी देंगे कि जीवन में और भी कई ऐसे आवश्यक कार्य हैं, दैनिक जीवन में काफी उपयोगी हैं और इनको करके आप अपने उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं, अपने को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार श्रमिक बंधुओं, फिलहाल ये गीत आपके लिए।

0: श्रमिक बंधु, आपने सुना बहुत ही मधुर गीत, और अब बारी है कि हम आपको मिलवाएं उस मेहमान से जो आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से आप फर्नीचर के कार्य के क्षेत्र में भी रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम अपने आज के मेहमान से कि किस तरह से फर्नीचर के क्षेत्र में भी आज हमारे कई साथी रोजगार प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सुनते हैं और फिर इनसे लाभान्वित होते हैं।
1: रोजगार के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसे करके अपनी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक युवा हैं जो कि बहुत ही मेहनतशील युवा हैं और ये फर्नीचर का काम करते हैं और फर्नीचर का काम करके अपनी बेरोजगारी को दूर किए हैं, और जिनका नाम है विक्रम राणा जो कि पश्चिम हजारीबाग के रहने वाले हैं। और आज इनसे जानेंगे कि कैसे फर्नीचर का काम करते हैं और किस तरह से फर्नीचर का काम करके अपनी बेरोजगारी को दूर किए हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारे हैं। तो विक्रम जी, सबसे पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: लगभग जिस काम से आप जुड़े हुए हैं, लगभग कितने सालों से इस काम से जुड़े हुए, कितने साल से इस काम को कर रहे हैं?
2: मैं अभी इस काम को लगभग 10 वर्षों से कर रहा हूँ।
3: 10 वर्षों से?
2: जी
3: जी, बहुत अच्छा है कि आप 10 वर्षों से इस काम से जुड़े हुए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फर्नीचर पेंट का काम कर रहे हैं, तो फर्नीचर पेंट करने का काम आपके मन में कब आया, क्यों आया, आप क्यों इस काम से जुड़े, आपके साथ क्या परिस्थिति आई कि इस काम से जुड़े और क्या समस्याएं हुई?
2: जी, मैं इस काम से काफी समय से, लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हूँ, और मैं पहले जो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया था उसके बाद मैं

0: रोजगार था और काफी समय से ही मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था जी। बहुत जगह मैंने फॉर्म अप्लाई किया और कोशिश किया नौकरी के लिए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया और मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मुझे मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, मैं बेरोजगार हो गया था, बहुत ही परेशान था। मैं सोच रहा था कि किसी बहुत तरह के दोस्त मिले जो गलत लाइन में मुझे खींचने की कोशिश, लेकिन मैं नहीं गया उधर। और मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना चाहिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने खुद का काम सोचा कि मैं खुद का कोई काम करूं।
1: जी।
0: फिर मेरे ही एक दोस्त जो फर्नीचर का काम करते हैं
1: जी जी,
0: उन्होंने मुझे सलाह दी कि मेरे ही दुकान में कुछ काम करो। तो मैं उसके साथ रहने लगा और कुछ काम करने लगा। लगभग एक दो वर्षों तक उसके साथ मैंने काम किया
1: जी।
0: और मैं उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा
1: जी।
0: काफी लगन के साथ
1: जी।
0: मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो मैं खुद का कुछ काम, हाथ का कुछ हुनर मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे काम करते करते
2: लगा कि हम बेरोजगार हैं। पहले मन थोड़ा सा भटका हुआ होगा कि हम बेरोजगार हैं, हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा मन में हुआ था?
0: बहुत तरह के मुझे मन में अलग अलग ख्याल आते रहते थे कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ क्या ये सही है कि नहीं है, मैं इसमें सफलता पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मुझे ये बहुत छोटा बिजनेस लगता था कि मैं ये सब काम नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर मैं टाइम पास के लिए काम कर रहा था
1: जी।
0: लेकिन देखा कि हाँ इस काम में मुझे मतलब अच्छा लग रहा था कि ये काम है सो अच्छा है, इसमें बस कुछ सक्सेस है, मुझे इसके बारे में धीरे धीरे सो अच्छा लगने लगा ये काम
1: जी।
0: और इसको लेकर के मैं काफी दिलचस्पी दिखाने लगा
1: जी।
0: और इस काम को मैं बढ़िया से कर रहा था।
2: बिल्कुल आप सही बोले, आप बहुत अच्छा, आप अपने लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां को देखे झेले और उस झेलते हुए आपने मेहनत की और अपने सोच को आपने बदला। आप जैसे पहले बताए कि मेरे कुछ दोस्त थे जो गलत सलाह दिए थे, लेकिन आप उन लोगों का बात नहीं माने, आप अपने मन का बात माने और अपने मेहनत के बल पे आज आपने अच्छा मकाम हासिल किए हैं। आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि आप फर्नीचर पेंट का काम करते हैं, तो आपके सबसे पहले आपको फर्नीचर पेंट करने की जरूरत, क्या क्या चीज का सामग्री की जरूरत पड़ती है?
0: मुझे पेंट करने के समय कुछ खास सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि काम करते वक्त हमारे आंख में कोई कलर ना पड़े या हमारे हाथ गंदे ना हो। इसको लेकर के बहुत सुरक्षित रखने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे हाथ सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। क्योंकि इसमें कुछ ब्रश पेंट करने में जो कुछ एसिड वगैरह होता है वो भी हाथ में आपके आंख में पड़ सकते हैं। उसको लेकर के हमें एक खराब कपड़ा रखना होता है, कांच पेपर रखना होता है, चेहरा ढकने के लिए मास्क रखना होता है जिससे कि हमारे चेहरे में कोई केमिकल ना पड़े
1: जी।
0: साफ कपड़ा, पेंट ब्रश, प्राइमर, रंग, सीलेंट या साफ रोगन रखना पड़ता है, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, काम करने में कोई उलझन महसूस ना हो।
2: बिल्कुल। और इस तरह से आप इतने सामग्री की जरूरत पड़ती है जिसमें आप काम शुरू करते हैं, इतना रखना पड़ता है?
0: जी हाँ जी
2: बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फर्नीचर का पेंट का काम करते हैं, तो कितने प्रकार का पेंट का काम करते हैं ताकि लकड़ियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसे चमकदार बनाया जा सकता है और उसे एक डिजाइनिंग दिया जा सकता है, तो आप इसमें से कौन कौन से पेंट का काम करते हैं?
0: जी अभी तो मार्केट में बहुत तरह के पेंट है जिसे हम काम करते हैं, लेकिन कुछ खास पेंट्स हैं जैसे एशियन पेंट्स है, वुडलैंड पॉलिस्टर है, वुडटेक एम्पोरियर पीयू है, वुडटेक एक्वायर पीयू है, जिसे हम खिड़कियों और दरवाजों को पेंट ब्रश से चमकीले और सुंदर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं खिड़कियां।
2: जैसे कि आप बताएं कि वुडटेक पॉलिएस्टर का नाम बताएं, तो इसमें वुडटेक पॉलिएस्टर का क्या खासियत है, इस पेंट का क्या खासियत है?
0: इस पेंट का एक खासियत है कि पेंटिंग से वर्षों तक यह चमकते रहता है।
1: अच्छा।
0: और इसका जो है चमक बहुत ही अच्छा होता है जिससे काफी वर्ष तक जो है यह सुरक्षित रहता है दरवाजों खिड़कियों को, और इसमें मजबूती भी होती है जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, दाग धब्बों और खरोचों आदि को दूर रखता है, जैसे इसमें किसी भी प्रकार से खरोच पड़ने पर यह दाग को दिखाई नहीं देता है, तथा लकड़ी को पैनिंग वगैरह जो को सुंदर बनाती है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रमिक बंधु अभी हमारे बीच थे विक्रम राणा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से फर्नीचर के व्यवसाय के जरिए भी आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और खुद के लिए रोजगार तलाश सकते हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी संतोष कुमार दास, और इसी के साथ कार्यक्रम मेहनत का समाप्त होता है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत कश। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना श्रीवास्तव और भीगे हुए शाम के इस दहलीज पे बैठे हैं आपके दिल को धड़काने का सबब ढूंढ रहे। आप सभी को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे लिया फिल्म खूबसूरत से और इसे आवाज दे अभिजीत ने।

बीवी नंबर वन फिल्म का ये गाना श्रोता हमने सुना अभिजीत और अनुराधा श्रीराम के तड़कते भड़कते आवाज में। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत आपके एफएम सेट पर।

ना तुम जानो ना हम। श्रोता, इस फिल्म का गाना आपने सुना पामेला जैन और अभिजीत की आवाज में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला बहुत ही खूबसूरत सा गाना अपने एफएम सेट पर।

दोस्तों 90s की सुपरहिट गाने आपने सुना आज की फिल्म संगीत में। चलते चलते कार्यक्रम के अंत में एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए हमारी ओर से।

दोस्तों, दस्तूर फिल्म के इस गाने को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत की महफिल यहीं सिमटती है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। श्रोताओ, आपसे थोड़ी देर में संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर होगा जिले में आजकल, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का

0: जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जलडुमधि से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दो नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर विश्व प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों को और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। दोनों ड्राफ्ट झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं। सरकार का कहना है कि व्यापक सुझावों के आधार पर नीतियों को अंतिम रूप देकर राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन इसके बावजूद कई महान राष्ट्रनायकों के योगदान को जनता तक नहीं पहुंचाया गया। श्री वर्मा आज रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एकता और अखंडता की रक्षा के जम्मू काश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के विषय को लेकर भारत माता के चरणों पे अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई, जिस व्यवस्था ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि आज के राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान लोगों के योगदान के बारे में जानकारी नहीं रखते।
1: इधर कांग्रेस पार्टी के नेता और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तभी से ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर से आम जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है।
3: देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे सब अभी हमारे हैं, चाहे नीट की बात करें, अभी जो आम उपभोक्ता एथनॉल की बात करें या फिर राम मंदिर की जो चोरी की बात करें, इन मुद्दों पे सरकार ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजें लाती है। देश के समक्ष बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं उन बातों को प्राथमिकता से लेनी चाहिए, लेकिन सरकार इस प्रकार के एजेंडे वो सेट करती है।
1: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत पलामू जिले में आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों और मार्क वोटरों के गणना प्रपत्र EF को भरवाया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, स्थानीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया और पांकी के विधायक शशिभूषण समेत अन्य मार्क वोटरों को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी के जिला और जमीन

0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी सेवा से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने में रचनात्मक भूमिका के लिए कर्मचारी संगठनों की सराहना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आयोग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकायत आयोग में कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आयोग जनजाति समुदाय की रक्षा कवच है और समाज के संरक्षण के लिए पूरे देश में काम करता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के बरकट्ठा अंचल स्थित मौजा बेरो कला की 117.68 एकड़ विवादित जमीन मामले में 118 रैयतों को अंतर में राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने बरही के अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। झारखंड में भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों में पिछले 3 वर्षों के दौरान कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में भ्रष्टाचार के 67 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2023 में ये संख्या घटकर 55 रह गई, जबकि वर्ष 2024 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 58 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2022 की तुलना में राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कुल मिलाकर कमी दर्ज की गई है। रांची के धुर्बा में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले की सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
2: मुख्य तौर पे रथ यात्रा का पूरा रूट है उसको सैनिटाइज करना है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना है ताकि रथ यात्रा के बीच में कोई भी किसी तरह का हादसा नहीं हो। उसके साथ साथ वॉलंटियर्स हैं उनका ऑप्टिमल यूज हो पूरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए, तो वही सब व्यवस्थाओं पे आज चर्चा हुआ है और उसका अब एग्जीक्यूशन हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे।
0: मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों के लगभग 100 जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड की अंडर-18 बालिका रग्बी टीम कल और परसों हैदराबाद के गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है।

0: राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास के बाद टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दो नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर वुशु प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दादा कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन।
3: बहुत मीठा होता है,
2: तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू जिले के सदर प्रखंड के पोखरा और जोड़वे ओवर ब्रिज बनाने और हाईवे निर्माण पूरा होने तक जोरकट में टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने किया। यहां उन्होंने कहा कि यह स्थान ब्लैक स्पॉट बन गया है। इसी महीने 3 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है।
2: सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता ऐसे लाइन रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, इस मांग को लेकर कि यहाँ पर पांकी से, चतरा से, हजारीबाग से प्रतिदिन यारों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती, स्टॉक से गुजरती, और जितने लोगों का इस 8-10 महीने में एक्सीडेंट में डेथ हुआ वहां से ज्यादा लोगों को जाने हैं, तो आने वाले समय में लोगों को जान नहीं देना पड़े अनावश्यक रूप से। यहाँ पर फ्लाई ओवर बना है और फ्लाई ओवर बना करके वो अपना सो अपने वाहन को ये नचाई पर बाय करे, इस क्रॉसिंग से नहीं जाए।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी में संलग्न सभी तत्वों को जेल भेजा जाएगा। वह डाल्टनगंज में परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: सरकार किसी के लिए जो किसी की राज में किसी को चोरी करने की छूट नहीं है, चोरी किया आज जेल के अंदर में जो है और जेल में कड़ी से कड़ी सजा आपको मिलेगी, वहां जो दोषी होगा वो जेल जाएगा।
1: 25 जून को आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भाजपा ने संविधान हत्या दिवस मनाया। मेदिनीनगर के नगर भवन में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी, पलामू के सांसद वीडीराम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि
4: संविधान के हत्यारे जिसे देश पर न्याय अत्याचार करने का काम किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर अन्य लोगों का अधिकार को सीमित करने का काम किया गया, और संविधान में भी न्यायपालिका जो अधिकार था समीक्षा करने का बीच बीच में उसे भी प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। कि मिसा जिसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी प्रमुख आदमी समाधि काम कर रहा है, कोई अपराध नहीं किया है, संविधान की हत्या किसने करने का काम किया, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसको जेल के अंदर जाने का काम करना पड़ा।
1: झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा पलामू पहुंची। यहां उन्होंने समीक्षा बैठक की, विधि व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में पलामू, गढ़वा, लातेहार के एसपी भी उपस्थित थे। बाद में तदाशा मिश्रा ने कहा कि
5: देख रहे हैं जैसा यहां पर स्थिति है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या बयान है, ये सब रिव्यू हो रहे हैं। ये रूटीन मैटर है, कोई विशेष हम लोग जिला वार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक एक जिला का सब चीज रही है। काम अच्छी हो रही है, स्त्री लोग नए हैं, यंग है, हार्ड वर्किंग है। जमीन का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, मेनली डिसीजन जो है उन लोगों के स्तर से लिया जाता है।
1: पलामू के हुसैनाबाद शहर के जपरा रेलवे स्टेशन रोड स्थित मां दुर्गा मंदिर में चोरी हो गई। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
6: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम जानकार। कार्यक्रम जानकार सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज की झनकार की महफिल सज रही है इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दिया अभिजीत ने और लिया हमने इसे फिल्म राजा बाबू से।

0: राजा बाबू का ये गाना श्रोता अभिजीत की आवाज में आपने सुना। लीजिए आप झनकार की अगली पेशकश।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं शाखा।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना जानकार में, ये पूर्णिमा की आवाज में दिलजली से, और चलते चलते बंटी और बबली फिल्म का ये गीत आपके लिए।

काली सजनाएं और शंकर महादेवन की आवाज में दोस्तों बंटी और बबली फिल्म का आप ये गाना सुन रहे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जनकार की महफिल यहीं सिमटती है। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोता, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:29 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया

नमस्कार जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन्स से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही

सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

नमस्कार जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा

0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दबा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दबा हो जाओ यहाँ से, जाओ बैठा।
2: साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो
2: साहब?
1: क्या है
2: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
2: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
2: ओहो, यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे?
1: तो उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
2: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
2: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
2: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब।
1: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार। लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है। क्या मुसीबत है? अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शो मेम शो।

0: सब जानती हूँ. यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस. ओके. खूब तमाशा है. देखा, मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड. लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए. क्यों?
1: अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है?
2: दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग. हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है.
1: बहादुर आ गया लगता है.
0: हाँ.
1: बहादुर, बहादुर.
3: आया साहब, आया साहब.
4: ओ मेम साहब, आप भी आ गया.
0: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो. क्या बात है?
4: हम साहब वो आज.
0: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है.
4: सब कुछ बता दिया?
0: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी. जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी. तुम बिल्कुल फिक्र ना करो.
4: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है. तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा. साहब वो लोग आ गए साहब. हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब.
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए.
5: सलाम साहब जी, सलाम साहब.
1: सलाम सलाम, बैठिए. अरे अरे, नीचे नहीं,
5: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए.
5: नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब.
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं.
5: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ. साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब. हमारा लड़की की माँ है साहब. ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है. अरे मैं शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो.
6: सलाम साहब.
1: सलाम.
6: सलाम मेम साहब.
0: सलाम.
6: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है. तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया.
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे. हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है.
5: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
0: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ.
5: होटल में साहब?
0: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं. शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी. नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब.
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं. बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ.
4: मैं अभी लाता हूँ साहब.
0: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ.
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गर्म?
5: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब. हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब.
1: अरे भाई, ये सब पुरानी बातें हैं. ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं.
6: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं.
1: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए. मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है. रीटा.
0: हाँ, तो आप लोग ठंडा लेंगे या गर्म?
5: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे.
6: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो.
1: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है. मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है. इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो. और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए.
5: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं. उसका बाप हमारे गांव का है साहब.
1: तो फिर रुकावट किस बात की है? फौरन शादी कर डालिए. और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
6: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब. शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
1: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए.
6: ना, ना, ना,
1: इसमें हर्ज ही क्या है? शादी तो उन दोनों को करनी है ना.
5: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब.
1: वो तो नजर आ ही रहा.
5: क्या मामा मतलब साहब?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं. मेरा मतलब वो नहीं था. मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है.
5: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं. दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब. हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब. हाँ. कोई नुकश नहीं. हाँ, घर का सब काम का जानती है. खेती में काम करती है साहब. एक घर का चूल्हा चक्की.
1: खुशी की बात है ये तो. अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
5: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब.
1: हाँ हाँ, क्या बात है?
5: तुम्हारी बात का साहब.
1: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला.
5: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात

0: ये कि मैं
1: तुम बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है? अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो सांप को साफ साफ सब बात कर दो।
0: चल तू ही बोल दे साफ साफ।
2: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
0: नहीं शाम नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
2: मुझको?
0: जी
2: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: साहब? आप शादी कब करेंगे?
2: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
0: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
2: मेरी शादी? क्या मतलब?
0: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफिक ही हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
2: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते?
1: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
0: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाह माफी देना शाह, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया शाह। चल लक्ष्मी।
3: क्या बात है शाह, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
2: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब की, मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
4: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? कस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले फिर बहादुर की शादी हो।
4: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
4: कभी नहीं हो सकता।
2: क्या नहीं हो सकता?
4: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
2: ये कोई जबरदस्ती है?
0: चलो लक्ष्मी। सलाम मेम साहब। सलाम साहब।
2: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
0: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
4: अच्छा खबर नहीं बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
0: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
4: सलाम
0: साहब।
4: सलाम
0: मैम साहब।
2: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
3: हाँ साहब जाते हैं साहब।
5: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
2: Good idea. मैं बस गया और आया।
3: मेम साहब जी, साहब किधर गया?
5: अंदर कमरे में तैयार होने।
3: अच्छा
5: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
3: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब।
5: हाँ
3: हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
5: अरे ठीक नहीं था बहादुर।
4: अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
3: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ अपने मुल्क से बुलाया इनको।
4: ओ, तुम्हारे हाँ। होने वाले सास ससुर?
3: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
4: हाँ,
3: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। हाँ, तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
5: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
3: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका भी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यास से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:44 और 22 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे होगा News@9, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर श्रोताओं आप सुन सकेंगे स्पॉटलाइट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और पुनः 9:30 से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे।

0: लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

0: राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।
1: No!

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के प्रसार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया की

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन।
1: हुई शाम का ख्याल आ गया।
0: मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओ रात्रि के 10:59 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार 11:00 और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और

0: रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas, as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert

खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता, क्रिएटर, सर्जनहार